एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावा देते हैं, जबकि धैर्य से लिया गया कदम सफलता की ओर ले जाता है। याद रखिए, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बहुत आगे निकल जाता है यदि वह रुकता नहीं। आज स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिन रास्ते के साथ एक नई शक्ति भी देता है।

मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और उसी मंदिर में उसकी आराधना हमें करनी होगी।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 87।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ जानकारी देंगे फखरुद्दीन अली अहमद की जन्म जयंती पर। साथ ही जानकारी देंगे आर के नारायण की पुण्यतिथि पर। इसके साथ साथ ऐतिहासिक स्थल चौपाल के आज के इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे और पर्यावरण में जानकारी देंगे मधु मालती की। सात बजकर 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ ब्याह का। प्रातः 8:30 पर एक ही फिल्म में के क्रम में आज सुनिए फिल्म कुली नंबर 1 के गीत। प्रातः 9:00 समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। 10:00 सुनिए फिल्म संगीत। 10:30 पर लोक संगीत। प्रातः 11:05 पर आज आप सुनेंगे कुछ कव्वालियां। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर परिवार में बातचीत का विषय होगा बेहतर करियर का संयोग योग। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनेगा कुछ भजने। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा नशा मुक्त भारत एक सामूहिक लक्ष्य। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सबह संगीत। 6:30 पर कार्यक्रम मौजा ग्राइदिया में बातचीत का विषय होगा फसल विविधीकरण मृदा परीक्षण। 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी में जानकारी दी जाएगी हिमाचल प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। 8:00 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 9:15 पर एक ही गीतकार के क्रम में आज सुनेंगे गीतकार रानी मलिक के लिखे गीत। 9:30 पर समय रहेगा चर्चा का विषय है जो कि आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे रूपक। और 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनिए चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, दोपहर 1:00, शाम 5:00, 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, दोपहर 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:55 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे।

0: ये जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The delegates will also meet the King of Bhutan and the Prime Minister of Bhutan during the visit. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those which were final reports have already been submitted. The fragile ceasefire between the United States and Iran appears increasingly unstable after President Donald Trump rejected Tehran's latest peace proposal, describing the agreement as being on massive life support and dismissing Iran's counteroffer as garbage. The sharp exchange has deepened uncertainty over efforts to prevent a wider conflict in West Asia. On the other hand, Iran's Parliament Speaker Mohammad Bagheer Kalibaf warned that the country's armed forces were prepared to deliver a lesson-giving response to any aggression, while Tehran defended its proposal as reasonable and generous. U.S. President Donald Trump is scheduled to arrive in Beijing today for a high-stake three-day visit to China. The much-anticipated meeting between Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is expected to feature discussions on several aspects of bilateral ties, with Mr. Trump indicating that trade would be a key topic on the agenda. The India Meteorological Department has issued red alert for heat wave conditions in Rajasthan. Border districts of state are currently reeling under severe heat wave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुप्रभात के संग के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज विशेष के साथ। श्रोताओं, आज 13 मई है और 13 मई का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। तेरह मई 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। आज ही के दिन 13 मई 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता था। तेरह मई 1901 में स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य का जन्म हुआ। 13 मई 1918 में भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म हुआ। 13 मई 1951 में संसार भर में श्रद्धेय एवं आध्यात्मिक और मानवतावादी गुरु रविशंकर का जन्म हुआ। 14 कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आपने ट्यून क्या है कार्यक्रम सुप्रभात। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे फखरुद्दीन अली अहमद की जन्म जयंती पर। श्रोताओं, आज मनाई जा रही है फखरुद्दीन अली अहमद की जन्म जयंती। इनका जन्म 13 मई 1905 को हुआ। वे एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दिल्ली में जन्मे अहमद ने दिल्ली और कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की और 1928 में लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने पर उन्होंने लाहौर और फिर गुवाहाटी में वकालत की। 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका लंबा जुड़ाव शुरू हुआ और 1939 में गोपीनाथ बोरदोलोई की सरकार में वे असम के वित्त मंत्री बने। 1946 में वे असम के एडवोकेट जनरल बने और 1957 से 1966 तक विमला प्रसाद चालीहा के नेतृत्व में फिर से वित्त मंत्री बने। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया और वे बिजली, सिंचाई, उद्योग और कृषि सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रभारी भी रहे। सन 1974 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे आर के नारायण की पुण्यतिथि पर। श्रोताओ, आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में तीन सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्कराज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत्त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्यतः उपन्यास तथा कहानी विधा को अपनाते हुए उन्होंने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने एक काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की। मालगुडी को प्राय दक्षिण भारत का एक काल्पनिक कस्बा माना जाता है, परंतु स्वयं लेखक के कथनानुसार अगर मैं कहूं कि मालगुडी दक्षिण भारत में एक कस्बा है तो यह भी अधूरी सच्चाई होगी, क्योंकि मालगुडी एक लक्षण धुरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त 1935 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में एक स्कूली लड़के स्वामीनाथन का बेहद मनोरंजक वर्णन है तथा उपन्यास के शीर्षक का स्वामी उसी के नाम का संक्षिप्तीकरण है।

जाना जाता है। यहाँ शिरगुल देवता मंदिर और सराइन में स्थित विजात महाराज मंदिर जैसे प्रमुख मंदिर हैं जो अपनी सोने की पालकी के लिए प्रसिद्ध हैं। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे पर्यावरण की, और पर्यावरण में आज आपको जानकारी दे रहे हैं उपयोगी पुष्प मधु मालती की। श्रोताओं, मधुमालती एक वनस्पति है जो शुप या लता के रूप में होती है। ये कैप्रीफोलियासी वंश में आती है। इसकी लगभग 170 प्रजातियां ज्ञात हैं। इनमें से लगभग 100 प्रजातियां चीन में, 20 भारत में, 20 यूरोप में तथा 20 उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां हैं लैनी केरा, जेपोनिका या जापानी मधुमालती या चीनी मधुमालती। मधुमालती की कुछ प्रजातियों के पुष्पों की ओर गुंजन पक्षी बहुत आकर्षित होते हैं। इसका नाम मधुमालती इसलिए सार्थक है क्योंकि इसके पुष्पों से खाद्य मधु निकलता है। एशिया के अलावा विश्व के कई अन्य भागों में ये सौंदर्य हेतु उगाई जाती है या स्वतः फैली हुई छाड़ी के रूप में भी पाई जाती है। और कार्यक्रम में अब चलते चलते एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस मे ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पूनम शर्मा और सपना कुमारी की आवाजों में गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:55 हो चुके हैं और अब समय है देशभक्ति गीत का।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रति

0: एक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9,00,000 करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
4: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. at a ceremony to be held at the Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangaswamy. More from our correspondent.
5: In stark contrast to

0: श्रोताओं, फिल्म कुली नंबर वन के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जो बनी 1995 में। ये एक भारतीय हिंदी मसाला फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया और इसे रूमी जाफरी और कादर खान ने लिखा।
1: कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
6: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
5: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
6: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
7: Nexa.
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म कुली नंबर वन के गीत। श्रोताओं, इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, हरीश कुमार, सदाशिव, अमरा पुरकर और महेश आनंद ने अभिनय किया।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
7: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
7: Yes, rupees 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
6: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa. आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म कुली नंबर वन के गीत। श्रोताओं, इस फिल्म में संगीत दिया आनंद मिलिंद ने और यह फिल्म 1993 में बनी तमिल फिल्म चिन्ना मपिल्लई की रीमेक है।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: चाहिए
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
3: पिज्जा पार्टी. ये चल अपना कार्ड और पिन दे.
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.

श्रोताओ, फिल्म कुली नंबर वन के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। ये फिल्म कपूर की शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी। गोविंदा को इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड मिला।

0: of just ₹6.70 lakh.
1: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your prongs today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म कुली नंबर 1 के गीत, और ये रहा कार्यक्रम का आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म कुली नंबर वन के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर।

0: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडी दोस्त रीना, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हाय हाय,
0: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस खूबसूरत ट्रैक के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं देवदास फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल और के। ये खूबसूरत सा संगीत है इस्माइल दरबार का।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी।
0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में फिल्म चल मेरे भाई से ये गीत।
4: दिल मेरा दिल बेकरार हो गया।
0: गीत के लिए संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीतकार हैं समीर।

0: जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, जिसे हमने लिया था फिल्म कुछ कुछ होता है से।
1: जागे ना सोता है।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि जारी रहेगा 9:30 पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 9:20 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबित देनदारियों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने शिमला में किया निरीक्षण, निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
1: जो हमारे छात्रों के साथ भारतवर्ष में इतना बड़ा जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 सालों से 3 सालों से घर से दूर रह के कैसे पढ़ाई करके नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नीट का एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आज उसको दुर्भाग्यवश पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है, ये केंद्र में कैसी सरकार है। और मैं तो सीधा हमला भाजपा सरकार पे करता हूँ कि ये जो एक विद्यार्थियों के साथ एक घिनौना कार्य किस लिए हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है। आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत वर्ष में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था, हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 32,000 के लगभग है। एक बहुत मेहनत होती है विद्यार्थियों की, उनके परिवार की, जो हमने भी देखे हैं, बच्चे लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और उनके जीवन का एक सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करना है।
0: पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां भी जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिसमें भटियात विकास खंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1,741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिला

0: के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। मंडी नगर निगम चुनावों में प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार ने मंडी के विकास को ठप्प करने का अभियान शुरू कर दिया था।
1: नगर निगम मंडी में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं होना चाहिए। जो पैसा दिया था 15 करोड़ से शहर के विकास के लिए, वो पैसा भी वापिस ले लिया। और मंडी नगर निगम की बात तो छोड़िए, पूरे मंडी जिले को पूरी तरह से विकास के रास्ते से हटा दिया है, नक्शे से हटा दिया ऐसा लगता है। और इसलिए यहाँ बहुत बड़ा गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ।
0: नगर निगम मंडी में भाजपा व कांग्रेस दोनों दल प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा शासित नगर निगम पर पिछले 5 वर्षों में मंडी की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासनकाल में शहर की जनता को पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा शहर को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाई। उन्होंने भरोसा जताया कि शहर के चहुंमुखी विकास के लिए जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 12 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक HRTC कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियां और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखवीर सिंह संधू ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित JBT भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में संपन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में स्वास्थ्य व योग क्रिया को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत 100 दिन निशुल्क लाइव योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के क्रम में ऑनलाइन योग को बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रस्तावित 27 मई को विश्व रिकॉर्ड बनाना है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रतिभागी 14 दिवसीय संचरित योग कार्यक्रमों में से विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। ये सत्र आयुष मंत्रालय द्वारा अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। अब एक नजर अखबार

0: पटों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े में FIR, 44 लोगों के साथ अफसर भी जांच के घेरे में। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का 4 दिनों के अंदर होगा भुगतान। पंजाब केसरी की एक खबर है, 42 दिन बाद मनाली लेह मार्ग बहाल, जल्द शुरू होगी वाहनों की आवाजाही। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पूर्व नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं। दैनिक जागरण की एक खबर है, शाहपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिरा, आयुष्मान को केंद्र से आए 50 करोड़, खर्चा होगा 155 करोड़ से। दिव्य हिमाचल लिखता है, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का फंडिंग फार्मूला अन्य राज्यों के हिमाचल पर भी पड़ रहा भारी। अंत में मुख्य समाचार, फिर नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की मांग। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबी देनदारियों को लेकर HRTC कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने शिमला में किया निरीक्षण, निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग।

कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भूल भुलैया से ये गीत नीरज श्रीधर की आवाज में। संगीत प्रीतम का है और गीतकार हैं समीर।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

कार्यक्रम गीतांजलि की अगली प्रस्तुति फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवाल, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारूं, इस महक

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं फिल्म एक था टाइगर से ये गीत। आवाजें हैं वाजिद खान और श्रेया घोषाल की।

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत सुमन के साथ।

इस गीत को गाया है लता मंगेशकर व साथियों ने। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीतकार है आनंद बख्शी।

शोधा, इस समय आप लुत्फ उठा रहे हैं फिल्म संगीत का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुस्कान फिल्म से।

अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीत, वे लोक गीत।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.
0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स, कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत व लोक गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लहरू राम सांख्यान की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोकगीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: अब हमारे केंद्र

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 13 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक HRTC कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियों और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 27 डिपो में सुबह 10 बजे से बसें खड़ी कर दी गई है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर, कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें भटियात विकासखंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1,741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू जिला में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कुल्लू जिला में एक महिला समूह ने इस दिशा में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। यहां राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 15 महिलाओं के एक समूह ने 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे रोपित किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महिलाओं का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी का एक प्रेरणादायक उदाहरण कुल्लू जिला के राधा रानी मंडल बुआई ने प्रस्तुत किया है। मंडल की 15 महिलाओं ने फॉरेस्ट रेंज भुट्टी के काईसधार बीट में पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया है। महिलाओं ने घरेलू जिम्मेवारियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की है। राधा रानी मंडल बुआई की महिलाओं ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे रोपित किए। महिलाएं केवल पौधारोपण तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि इन पौधों की देखरेख की जिम्मेवारी भी मंडल ने स्वयं उठाई है। इसके अलावा पौधों को पशुओं से बचाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी भी की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित जेबीटी भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में संपन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 11:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनमोल की आवाज में।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं कवालियां।

हम सफर हम राद हों, ता कयामत

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से ये कवाली। गायक कलाकार हैं आशा भोंसले, मोहम्मद रफी,

सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर और फरीद सबरी जयपुरी की मिली जुली आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे हिना फिल्म से ये कव्वाली।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
3: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें
3: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
3: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर

0: का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब नहीं, तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है।
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी। भाई कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी होगा।
4: चलो चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है हाँ। तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।

0: है। हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
0: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
2: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
1: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
2: अरे ये क्या गिरा?
0: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
2: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
2: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
2: इसका नाम
0: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
2: स्वाद है,
1: पसंद है,
2: सबसे अच्छा भी है।
1: कौन सा फल है?
2: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
2: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ। हाँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
8: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
9: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
10: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
8: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो। ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गाँव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
6: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
6: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
6: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी, यस सर।
6: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर। उधर से।
6: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
6: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
6: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
6: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर।
6: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
6: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
6: कोई शक?
2: नो सर।
6: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
7: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
8: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
8: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
8: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
8: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
8: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
8: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
8: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए।
2: धीरे।
8: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे। जी सर।
8: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे।
6: वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 12 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म बेमिसाल का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मी का, आर डी बर्मन का।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में फिल्म बहार आने तक का ये गीत। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार।

0: कार्यक्रम घर परिवार के सुहाने सफर में सखी आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सखी सुमन। और आज मैं आपको अपनी दूसरी सखी के साथ भी थोड़ा सा मिलवाना चाहती हूं। और भी सखी, आप भी अपना नाम अपनी सखियों को बता दें कि क्या नाम है आपका।
1: जी बिल्कुल सुमन, आज आप अकेली नहीं है स्टूडियो में, मैं भी आपके साथ हूं। और आवाज से तो मुझे लगता है सखियां पहचान ही गई होंगी, है ना
0: जी।
1: मेरा नाम है रीना और सभी सखियों का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और नमस्कार, और सुमन आपको भी मेरी नमस्ते।
0: जी नमस्कार जी, और बताएं रीना आप कैसी हैं, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हमारी। मुझे तो लगता है कि बरसों बीत चुके हैं हमें मिले हुए ना।
1: बिल्कुल सुमन, बहुत समय बाद हम साथ में हैं और कैसा लग रहा है ये तो पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि
0: नहीं,
1: बहुत
0: वो तो मुझे
1: है ना?
0: आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आप तो खुश हैं। खैर मैं भी खुश हूँ, और मेरी खुशी का असर तो आप देख ही रहे हैं, कुछ मेरे शरीर से भी पता लग रहा है
1: आपकी
0: क्योंकि
1: खुशी का असर कम और आप पर मौसम का असर ज्यादा लग रहा है मुझे।
0: जी रीना बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि मौसम का बदलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम सभी जानते हैं सखियां हमारी भी, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और जिस तरह से ठंड पड़ रही है, एकदम से गर्मी होना, ठंड होना, और उसी वजह से थोड़ा सा हमें भी अपने सेहत में फ़र्क नज़र आ रहा है। और बहुत सारी सखियों को इस तरह से हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रही हैं। तो आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं अपनी सखियों को।
1: बिल्कुल सुमन, सही बात कही आपने। और जब मौसम में बदलाव होते हैं ना, तो मौसम का हमें समझ नहीं आता कि
0: जी
1: मौसम है कैसा, है ना। अब देखिए मई का महीना है, वैसे तो गर्मी का महीना है, लेकिन जब बारिश हो रही है, तूफान कितना आ रहा है ना, डर भी लग रहा है और हल्की ठंड भी बहुत हमें लग रही है। हल्की शॉल स्वेटर तो मुझे लगता है इस बार सखियों ने भाई उठानी ही नहीं है ना, क्योंकि रखी ही होगी। और जब ठंड लग रही है तो उसे हम ओढ़ भी रहे हैं, और दूसरी तरफ जब तेज धूप लग रही है तो बहुत गर्मी भी लग रही है। तो मुझे लगता है आप पर इसी बदलाव भरे मौसम का असर है।
0: जी, तो रीना हम अपनी सखियों से कहना चाहते हैं कि आजकल का मौसम जो है थोड़ा सा बदलाव भरा है, तो थोड़ा सा हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, और खान पान के साथ साथ पहनावे का भी ध्यान रखना है ना।
1: जी हाँ बिल्कुल, पहनावा तो समझ नहीं आ रहा, गर्मियों का हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम के कपड़े पहने ही पहने, है ना। लेकिन जब भाई मौसम बदल रहा है तो हल्के हमें ठंड के कपड़े भी पहनने पड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो रीना हम बहुत सारी बातें आज अपनी सखियों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि आज हमें मौका मिला है तो दिल खोल के हम अपनी सखियों के साथ बात करेंगे।
1: राज खोलने
0: लेकिन
1: वाले हैं कुछ, मुझे
0: बिल्कुल
1: लगता है
0: बिल्कुल
1: सुमन।
0: सही, लेकिन थोड़ा सा हम रुक लेते हैं ना, क्योंकि अगर हमारी बातें ही चलती रही तो कहीं ना कहीं हमारी सखियाँ परेशान ना हो जाएं कि भाई आज ये अपनी बातें किए जा रही हैं और गीत तो हमें सुना नहीं रही हैं।
1: और भाई मनोरंजन का तो हम भूल ही नहीं सकते सुमन,
0: जी
1: मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप लेकर आई हैं हमारी सखियों के लिए।
0: भाई मैं आपसे भी यही कहना चाह रही हूँ कि कह दो तुम कुछ और सखियों को भी सुना देते हैं यही प्यारा सा गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं अपनी सखियों को ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो।

0: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: सखे गीत और विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं
2: सुमन और रीना के साथ।
1: जी बिल्कुल रीना, मैं आपके बारे में बताना आज भूल गई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना रीना, कुछ सखियाँ कुछ टाइम के बाद हमारे साथ जुड़ती हैं ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सखी 12:30 बजे ही रेडियो सेट ऑन कर ले, तो भी अपना परिचय देना बनता है। अच्छा कि आपने अपना परिचय दे दिया, और परिचय के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारा पिटारा जो है भरा हुआ है, बहुत सारी जानकारियाँ आज हम सखियों के लिए लेकर आई हैं।
3: मैं वही पूछने वाली थी सुमन आपसे कि भाई आज आप अपने पिटारे में क्या कुछ लेकर आई हैं हमारी सखियों के लिए।
1: रीना आज हम थोड़ी सी बात करेंगे करियर के बारे में, क्योंकि आपको तो पता है आजकल कंपटीशन का ज़माना है, और बच्चे जैसे ही प्लस टू करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी टेंशन, खैर हम अभिभावकों को तो होती है, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इन सारी बातों में हमें थोड़ा सा गाइडलाइन अपने बच्चों को देनी पड़ती है ना।
3: जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को तो देनी ही पड़ती है सुमन, और करियर की आप बात कर रही हैं तो भाई हमारी ऐसी बहुत सी सखियाँ हैं जो अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं, है ना, एक अच्छा करियर में
1: तलाश कर रही हैं,
3: नहीं कुछ कर भी रही हैं और कुछ अच्छे मुकाम पर हैं। तो और कुछ सखियां ऐसी भी हैं सुमन जो कुछ भी नहीं करना चाहती, है ना, वो अगर हम उनसे बात करें कि आप क्या करती हैं तो उनका जवाब बहुत बार ऐसा आता है कि हम एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, बस घर का काम करती हैं।
1: चाहे वो बड़ा काम है,
3: चाहे वो पढ़ी लिखी हों या कितना कुछ उनमें हुनर हो, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक गृहिणी कहती हैं। तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं सुमन अटकती है कि घर गृहस्थी संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, है ना। समय पर सबको हम सब कुछ देती हैं, लेकिन फिर भी उस काम को सखियां कुछ भी नहीं मानती हैं। और करियर की बात अगर हम करें तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं और अपना कुछ शौक रखती हैं, अपना कुछ एम रखती हैं, उद्देश्य रखती हैं जिंदगी का, तो आपको उस उद्देश्य की तरफ जरूर जाना चाहिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको जरूर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी में आप सिमट कर रह जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
1: जी रीना बिल्कुल, पता क्या होता है कि शादी हो भी अगर जाती है ना बीच में कहीं, तब भी पढ़ाई हम लोगों को अपनी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, और जीवन में अगर सफल होना है तो पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी। और शिक्षित बहुत सारी हमारी नारियां ऐसी हैं, बहनें हैं जो अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, और बहुत सारी जो सखियां हैं उनके नाम भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, हमारी बेटियों को मिलती है, हमारी बहनों को मिलती है। तो
3: कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हमें किसी ना किसी से, है ना। ये नहीं है कि खुद को सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित आप रखें। आप अगर कुछ आपके आसपास कुछ नया हो रहा है, कुछ रोमांचित हो रहा है, तो आप जरूर उसमें भाग लें, अपनी भागीदारी उसमें दर्ज करवाएं, कुछ सीख कर आएं, है ना। और अगर जब आप बाहर जाती हैं 10 चीजें आप सीख कर आती हैं तो वो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं।
1: जी रीना, बाहर तो जाकर सीखती हैं, खैर अपने स्टेशन से भी हम बहुत सारी जानकारी अपनी सखियों तक पहुंचाती हैं। जैसे अभी भी करियर की बात हो रही है तो सुनते सुनाते भी हमें बहुत सारी जानकारियों का पता लगता है, और कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में होती भी हैं, हम उन पर अमल नहीं करती हैं, और जब रेडियो पर सुनती हैं तो पता क्या कहती है अपनी सखियों से, अरे ये बात तो मैंने रेडियो पर सुनी थी, इस तरह से हमें करना चाहिए, या एक आइडिया जिसको हम कह सकते हैं हमें मिल जाता है।
3: बिल्कुल सुमन, कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए, है ना। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर,
1: बिल्कुल
3: तो ऐसा हमें बिल्कुल खाली दिमाग नहीं रखना है, बल्कि जब भी आपको समय मिले आप पढ़ाई करें, या अगर आप कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये बहाना ना लगाएं कि मुझे समय नहीं मिलता, क्योंकि वक्त तो निकालना पड़ता है, है ना। वक्त तो भाई चला है और चलता ही रहेगा, और वक्त हमें निकालना पड़ता है
1: अपने। तो आपके वक्त से रीना मुझे याद आ रहा है कि वक्त हो चला है एक गीत का, तो क्यों ना अपनी सखियों तक आवाज अपनी पहुंचाते हैं फिर से गीत के जरिए।
3: बिल्कुल मनोरंजन मुझे लगता है सुमन, आप बहुत अच्छे अच्छे गीत आज चुनकर लेकर आई हैं ना।
1: भी बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है अपनी सखियों के साथ, और एक खुशी है कि हम आज इकट्ठे बैठकर सखियों के साथ बात कर रहे हैं। खैर रेडियो में रीना बहुत सारी हमारी सखियां हैं, लेकिन उससे बाहर समाज में यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी सखियां मिली हुई हैं, और समाज भी हमारे परिवार के जैसा होता है। और सखियों के रिश्ते की रीना बात करें तो एक बड़ा प्यारा बड़ा मजबूत सा रिश्ता होता है, जो बात हम अपने परिवार में किसी से नहीं कह सकते वो बात अपनी सहेली से कह देते हैं ना।
3: तभी तो हमारा कार्यक्रम भाई सखी सहेलियों का कार्यक्रम है ना। और कितनी सखियां जुड़ती हैं सुमन, और कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, और दिल हमारा जो है वो

0: मतलब सुनकर ऐसे गर्व से फूल जाता है कि
1: फूल
0: नहीं
1: जाता है
0: बेशक ये
1: जी।
0: हमें सुनती हैं, कार्यक्रम को सराहती हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मनोरंजन तो भाई हम करवाते ही रहते हैं, बातें करते हैं, साथ ही साथ बहुत गीत, अच्छा संगीत चुनकर भी लेकर आते हैं। तो आप जल्दी से एक बहुत ही प्यारा संगीत प्ले कर दीजिए ताकि सखियों का मनोरंजन हम कर सकें।
1: और सखियां बोर ना हो
0: जी बिल्कुल।

0: सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और साथ ही साथ रीना आपका भी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सुमन। और बताइए अब आगे बातचीत का क्या हमारा मसला है?
0: रीना, थोड़ी सी बात हम करेंगे योग के बारे में। आप तो जानती हैं आजकल योग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और हर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत ही जागरूक हो चुका है।
1: बिल्कुल, अपनी सेहत को लेकर जागरूक होना अच्छी बात है सुमन। और जैसे कि योग की आप बात कर रहे हैं, तो योग जो है वो हमें निरोग बनाए रखने में बहुत मदद करता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल सही बात कही रीना आपने। देखो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है और हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, पूरा दिन तो समय नहीं मिलता है। लेकिन आजकल की गर्मियों की बात करें तो सुबह सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है और उसके बाद जल्दी उठकर हम अपने आप को यानी खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। आधा पौना घंटा, एक घंटा हम खुद को समय दे सकती हैं, और मोटी मोटी दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है ना रीना कि हम योग कर लें और निरोग रहें। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि योग अपनाए और रहे निरोग। तो
1: बिल्कुल।
0: अगर हम तंदुरुस्त और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो उसके लिए योग को अपनाना पड़ेगा।
1: और योग को के लिए सुमन हमें वक्त जो है, फिर से वही कहना चाहूँगी कि वक्त निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपको स्वस्थ रहना है, फिट फाइन रहना है,
0: जी
1: तो ज़रूर आप योग को अपने जीवन में शामिल करें। आजकल जैसा कि आपने कहा, गर्मियों का मौसम है, सुबह जल्दी हो जाती है, 5 बजे सुबह हो जाती है ना।
0: जी
1: आप थोड़ा सा जल्दी उठिए और देखिए सुबह बाहर का नज़ारा भी कितना खूबसूरत होता है। उसमें आप 15 मिनट या 30 मिनट तक भी अगर आप अपने शरीर के लिए आप देते हैं,
0: जी
1: तो इससे बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल रीना, आपकी बात सुन के मुझे ध्यान आया कि आपने कहा गर्मियों की बात हो गई है। अरे गर्मियों का मौसम चल रहा है और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह थोड़ी ठंड हो, कहीं कहीं ऊपरी इलाकों की बात करें तो कहीं गर्मी भी हो रही है। तो थोड़ा सा हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है और गर्म मौसम में हमें अपना खान पान में भी बदलाव करना पड़ता है। ज़्यादा हम पेय पदार्थों को लेते हैं तो आपकी
1: तो
0: बात से मुझे
1: भाई
0: याद आ गया।
1: मैं, हाँ,
0: हाँ
1: आपकी जो ये बातें हैं ना घुमाने फिराने वाली, मैं भी समझ गई कि अब आपका समय हो गया है मुझे किचन में लेके जाने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, किचन में मैं लेकर जा रही हूँ और आपको ठंडा सा पेय पदार्थ आज मैं पिलाने वाली हूँ। आज
1: भाई
0: हम
1: क्या बात है, आज तो सच में अभी प्यास भी लग रही है, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं। तो क्या कुछ है आज आपके लिए
0: आज मुझे
1: खास?
0: लग रहा है कि मेरी गेस्ट आज मेरे पास आई है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो भाई थोड़ी सी सेवा भाव मेरी बनती है, आवाभगत मुझे आपकी करनी पड़ेगी। और
1: जी
0: उसके लिए जल्दी से हम बनाते हैं शिकंजी। और देखो रीना, हमारे पास कुछ भी ना हो तो घर पर नींबू तो पड़े ही होते हैं ना।
1: बिल्कुल
0: जब भी कोई आए तो अपनी सेहत को ध्यान में रख के हम नींबू पानी या शिकंजी भी तो बनाकर दे सकते हैं। उसके
1: जी
0: लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले से हम थोड़ा सा मसाला बना कर रख लेते हैं, जैसे काली मिर्च, मीठी सौंफ, भुना जीरा और काला नमक मिला के रख लिया, उसको पीस के रख लिया। और जैसे ही कोई आए, जैसे आप मेरे पास आ गई हैं, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है मेरे पास मसाला बना है, तैयार है। और थोड़ा सा एक और काम करना है रीना, क्या करना है वो है चीनी को मिक्सी में हमें बारीक पीस कर रख लेना है।
1: अच्छा
0: बस एक गिलास ले, उसमें नींबू निचोड़े और जो मसाला हमने बनाया है वो डालें और ठंडा पानी डाल दे ऊपर से,
1: मिनटों में नहीं, सेकंडों में तैयार है ना
0: सेकंडों में। और
1: भाई।
0: फटाफट से क्या करना है, पुदीना हमने घर पर लगा कर रखा होगा, उस पुदीने को उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देना है यानी सजा देना है। अभी सखी इतने दिनों के बाद मिल रही है तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना।
1: भाई ठंडी ठंडी जो आपकी ये शिकंजवी है सुमन,
0: जी
1: भाई बहुत टेस्टी लग रही है, बनने वाली है।
0: नहीं, बनने
1: और
0: वाली है, अभी बनी नहीं है
1: हाँ
0: क्योंकि
1: वही
0: थोड़ी
1: मैं
0: सी
1: कह रही हूँ कि
0: तैयारी
1: बनने
0: बाकी
1: वाली
0: है।
1: है, और मैं तो बेसब्री से इंतजार ही कर रही
0: बिल्कुल
1: हूँ कि
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बेसब्री
1: जल्दी
0: से
1: से
0: आप
1: ये
0: इंतजार कर रही हैं तो वो बनता नहीं
1: जल्दी
0: है,
1: से
0: मैं
1: आप
0: उसे
1: बनाएं।
0: सजाने वाली
1: और
0: हूँ।
1: मैं जो ये थोड़ी सी हल्की सी, आज गर्मी का मौसम है, धूप लगी है, तो अपनी ठंडक भी मिटाऊं और आपकी शिकंजवी भी पीऊं।
0: जी तो रीना कहते हैं कि चीज़ देखने में अच्छी हो, खाने पीने की चीज़ वस्तु कुछ भी हो तो खाने का और मन करता है या पीने का मन करता है। जैसे मैंने बताया पुदीने की पत्तियाँ डालनी है, उसके साथ साथ लेमन का एक टुकड़ा काट कर डाल देना है उसमें, और थोड़ा सा टेस्ट करके आप मुझे बताएं कैसा है। और आपकी टेस्ट के साथ साथ मुझे घड़ी की तरफ भी ध्यान जा रहा है, आप इसका स्वाद लें और चलते चलते हम सखियों को सुनाते हैं गीत।
1: जी
0: क्यों
1: बिल्कुल।

0: तो सुमन, ये तो आप बहुत अच्छा सुना रही हैं कि हम भी सखियों के दिल में रहते हैं और
1: बिल्कुल
0: सखियां भी
1: बिल्कुल
0: हमारे दिल में रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बातचीत को अब यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि
1: जी।
0: वक्त नहीं है कि
1: वैसे रीना मन नहीं कर रहा है अपनी सखियों से विदा लेने का,
0: और लग भी नहीं रहा कि इतनी जल्दी इतनी समय जो है वो बीत गया है
1: कि
0: ना।
1: जब प्यारी प्यारी सखियां हमारे साथ हों और जुड़ी हुई हो तो मन कहाँ करता है उनसे बिछड़ने का। लेकिन खैर, समय को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा इनसे विदा लेनी चाहिए
0: जाएंगे तभी आएंगे फिर से,
1: जी।
0: है ना।
1: तो अपनी सखियों को जल्दी से बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया है हमारे साथ सुरेंद्र कपूर ने,
0: और
1: और
0: हमारे कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है वो जतिंदर पाल सिंह।
1: जी। तो सखियों से लेते हैं विदा, अगली बार नई बातों और नई जानकारियों के साथ हमें
0: फिर
1: फिर
0: से
1: से
0: हम
1: उनसे मिलना
0: रूबरू
1: है ना
0: होंगे।
1: जी। तो प्यारी सखियों,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government, led by C. Joseph Vijay, won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the Assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Ardlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record fifth term. At a ceremony held at the Lok Nivas, Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office and secrecy. Maladi Krishna Rao of the All India NR Congress and A. Namasivayam of the BJP were also sworn in as ministers at the ceremony. Among those present were BJP National President Nitin Nobin, BJP National General Secretary Organization B.L. Santosh, State BJP President V.P. Ramalingam, officials and party leaders. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's 7 appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst West Asia crisis. Sources further added that while the convoy size was reduced, all critical security components continued to remain in place. Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing it to less than half. The chief ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. The government has increased the import duty on gold and other precious metals with immediate effect. In a statement, the Minister of Finance said that gold and silver findings will attract 5% duty, while platinum findings will attract 5.4% duty. Furthermore, precious metal spent catalyst is set at 4.35%, subject to the fulfillment of compliance criteria. A CBI team has arrived in Jaipur to probe the alleged leak of the NEET examination paper and question around 2,000 people rounded up by the Special Operations Group of Rajasthan Police. Meanwhile, hundreds of people have been questioned by the police in Sikhar and nearby areas as part of the investigation. The Punjab government has decided to formulate a reservation policy for Agniveers in government jobs after the completion of their tenure in the Defence Forces. To finalise the modalities and framework in a time-bound manner, a high-powered committee comprising senior civil and police officers has been constituted. Chief Minister Bhagwan Singh Mann has given in-principle approval for extending reservation benefits to Agniveers. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met Minister of Foreign Affairs of Chile, Francisco Perez Mackenna. In a social media post, Dr. Jaishankar said both sides held discussions on strengthening bilateral cooperation to diversify markets and sourcing and promote the export of priority items and facilitate the services economy. They agreed to work closely in plurilateral and multilateral formats. Meanwhile, Indonesian Foreign Minister Sugiono also arrived in New Delhi early this morning to participate in the two-day BRICS Foreign Ministers meeting starting tomorrow. Benchmark domestic equity indices spared their early losses and were trading moderately up in afternoon session today. The Sensex rose 201 points to 74,760, while the Nifty added 77 points to 23,457 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: सुलझाते हैं क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपनी उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहाँ, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ शब्द हैं जिंदगी, पहेली, कोई, समझ, सवाल जवाब, ख्याल, जीना, सहारा, अनजानी, बहती, झूमती, गाती जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं, और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं कर रही। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हों, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो ज़रा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है, जिंदगी, पहेली, सवाल जवाब, मुश्किल, ख्याल, महका, मन, नदी, धारा, उलझन, गाती, झूमती, रचना या रचती, अफसाने, हकीकत, सपना, कहानी, अनजानी, जानी पहचानी, सहारा बेसहारा, जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उछा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और ज़िंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
1: क्या कहा?

0: सब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई ज़िंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि ज़िंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना ज़रूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी ज़िंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि ज़िंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज़ या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत, ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के ज़रिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें

कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई ख़तरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज़ किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई

ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 100,000 फॉलोवर हैं, 100,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज़ है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था, नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मज़ा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के।

की जान। सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने के सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं हैं, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठें और बस बाहर आएं, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बम्बई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बम्बई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बम्बई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला, जो चीन की सीमा पर है, वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम, बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफ़ी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफ़ी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, ख़ास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीज़ें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज़ किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहेगा।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: लूट गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

0: दुनिया जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर NDA में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज़ में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निर्देशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

नीला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला। हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का

बच के रहना देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला, बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी की आवाज़ में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को चार दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी चार दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख में मामले को आगे सूचीबद्ध किया जाएगा। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने जहां 4 नगर निगमों सोलन, धर्मशाला, पालमपुर व मंडी के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बताया कि चारों नगर निगमों के कुल 64 वार्डों में भाजपा ने कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को कई वार्डों में उम्मीदवार खोजने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। इस बीच अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव

0: प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए नई योजनाएं लाकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
1: मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर आज शिमला में सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान निगम की चालक परिचालक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर आज कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो प्रदेश में बसें खड़ी कर दी जाएंगी। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि बीते दिन हड़ताल की चेतावनी देने के बाद निगम प्रबंधन ने आनन फानन में 3 डिपो के कर्मचारियों को वेतन जारी किया जबकि बाकी 27 डिपों के कर्मचारी अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन ने कहा है कि अगर अगले महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करते हुए बस सेवाएं ठप करेंगे।
2: हमने जिस डिपो में जिन 26-27 डिपुओं में सैलरी नहीं मिली है हमने उनको क्लियर आदेश दिए है कि जब तक आपको पैसे का मैसेज नहीं आता है आप इनकी लिमिट की बात इनसे ना सुने, आप बैंक की बात इनसे ना करें, वो इनका काम है। अगर ये बोलेंगे कि बैंक को भेज दिया चेतन ना डाले तो हम तो इनके पीछे घूमने को रहेंगे। हमने क्लियर आदेश दिए कि 10 बजे आपने गेट मीटिंग करनी और गाड़ियां खड़ी करनी है। अगर मैसेज आता है तो गाड़ियां चलाओ, नहीं आता है तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है चिंतन शिविर सांझा दृष्टिकोण के जरिए भारत में खेलों के भविष्य को दिशा देना। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का। चिंतन शिविरों का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करने के बाद भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि ये आज भारतीय खेल जगत की सबसे सामयिक और असरदार पहलों में से एक है। हम अपने राष्ट्र की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहां इरादा, निवेश और प्रेरणा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रहे हैं। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेल हाशिए से मुख्य धारा में आ गया है। इस महत्व के प्रति भी साफ तौर पर राष्ट्रीय जागरूकता देखी जा सकती है, न केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साधन के रूप में भी। आज हम एक विशाल और विविध तंत्र देख रहे हैं जहां राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निगम, संघ और जमीनी स्तर के संस्थान सभी मिलकर खेलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। चिंतन शिविर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। खेल अपने आप में कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जिनमें विनिर्माण, मनोरंजन, फिटनेस, मीडिया और शिक्षा शामिल है। ये शिविर इन सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने में मदद करता है जिससे एक साझा दृष्टिकोण बनता है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ये देश के सामूहिक दृष्टिकोण को सामने लाता है और साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है जिससे अनुकरण और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये शिविर महज एक सम्मेलन से कहीं बढ़कर एक शिक्षण तंत्र है। ये इसमें शामिल होने वाले लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने, चुनौतियों को समझने और मिलकर समाधान विकसित करने का अवसर देता है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में भी काम करता है, सफलता की तमाम कहानियों को सामने लाता है और इस विचार को और पुख्ता करता है कि भारत में खेल महज विशिष्ट पदकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें भागीदारी, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है। फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक गतिविधियों ने खेल के प्रति हमारे नजरिए को एक नया रूप दिया है। आज के वक्त में सभी के लिए खेल के साथ साथ उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता पर जोर है। पदक जीतने की आकांक्षाएं और व्यापक भागीदारी अब अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। श्रीनगर में शिविर का आयोजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस शहर की शांत सुंदरता न केवल खेलों की विचारधारा के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि शांत चिंतन का भाव भी देती है, जो सार्थक संवाद के लिए बेहद जरूरी है। इस चिंतन शिविर का एक अहम केंद्र बिंदु श्रीनगर खेल संकल्प को अपनाना था। यह संकल्प महज एक आशय का दस्तावेज नहीं, बल्कि ये एक एकीकृत ढांचा है जो भारतीय खेल जगत के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को एक साथ बांधता है। साझा लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके ये एक ऐसा रोड मैप तैयार करता है जो विखंडन के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। श्रीनगर खेल संकल्प की असली ताकत विभिन्न भागीदारों, सरकारों, संघों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता में निहित है। ये इस विचारधारा को और पुख्ता करता है कि भारत के खेल जगत का उत्थान अलग अलग प्रयासों से नहीं हो सकता, इसके बजाय इसे एक समन्वित सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, जहां संसाधनों, ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जाए। भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ये समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए न केवल प्रतिभा की जरूरत होती है, बल्कि एक सुचारू तंत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जमीनी स्तर पर पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कोचिंग, प्रतिस्पर्धा का अनुभव और निरंतर वित्तीय व संस्थागत समर्थन शामिल है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
6: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
7: तो कश्मीर चले?
6: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है, जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
7: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
6: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
7: कितनी
6: वो,
7: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
6: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला है। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
7: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
6: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफ़ी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजनपूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
7: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाँकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
6: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
7: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
6: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, और एक दो महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
7: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
6: बिल्कुल।
7: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते
1: काम
0: थे।
1: कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समझो, घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ,
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की ज़िंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही ज़रूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी, ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक रही थी इस गाने में, है ना।
1: जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
0: तो देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है। सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या बात है?
1: बहुत सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहाँ खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहाँ बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
1: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी

0: बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज़्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज़्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी ज़रूरी है और जीना भी ज़रूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा।

0: जी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे, अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक
0: दिन। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूँगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दें, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जूहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूँगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तो मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज,
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: सचमुच हमारे देश में बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को है, एक बार पुनः से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: उस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी वो बहुत प्यारा ज़माना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो ज़माना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में ख़ास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम हैं उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो मैदान हों, गांव हों, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: और यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस ज़माने में, और आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूँगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर हैं आप, तो ये अनाउंसर का वो
1: दर्जा होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता
1: हाँ
0: ही नहीं आपको,
1: जी,
0: लेकिन अगर अनाउंसर हैं आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युववाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युववाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: कवि के रूप
1: बात है
0: में, एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युववाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाज़ें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा,
1: बल्कि हेड करेंगे।
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट

0: तौर पर, और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े
1: लोग,
0: दिग्गज
1: से
0: लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गज़ल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट्स, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला। हम
1: यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही
1: बताएं।
0: है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंट्रल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी और सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से वो थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा फिल्म का
0: अच्छा
1: गाना
0: है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुनते
0: हैं, पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीज़ों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जेम, पोले विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो ज़माना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: ये गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता,
0: खुद गाते थे
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर, फिल्म म्यूजिक का।

0: मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मैंने
1: जारी
0: कहा ना,
1: रहा है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
1: जी
0: से।
1: रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब BA का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको
1: हाँ
0: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल।
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम,
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, कि वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफ़ी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है, वो
1: जी
0: उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे ज़माने से पहले ही,
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था
0: बिल्कुल
1: और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफ़ी
1: आज भी
0: होता,
1: हवा महल में
0: हाँ
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी,
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं MA मैंने किया ही किया था,
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा यार, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया,

0: वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया। और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर,
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, सब,
1: थे।
0: और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो,
1: ऐतिहासिक
0: हाँ।
1: स्टेशन है जलंधर।
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे, मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल।
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब,
1: थी। जी,
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल,
1: रहे?
0: एक साल।
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस ज़माने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को भी मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: पूरे उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता था।
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: जब।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: गीत।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: वो
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद।

0: तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
0: मिनिमम
1: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
0: हाँ
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से, कभी वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी,
1: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
0: तो
1: या
0: आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
1: हाँ
0: लगा है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी जी
1: होते थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते
0: दौर भी
1: नहीं
0: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
1: थे।
0: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी दे
1: नहीं
0: देकर
1: बिल्कुल, ये
0: दी।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप
1: कोई
0: रे,
1: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो एक नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते हैं सब कुछ है। लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते को
0: लेना।
1: तंग करना या मस्ती करना,
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी।
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे,
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: नंबर 2 था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जाते, घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
0: जी,
1: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो
0: रोज आ रही
1: है,
0: है।
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन।
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ,
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे, वो तो वो मैं भूल नहीं
0: उसका जिक्र ना ही
1: सकता।
0: करें तो
1: तो ये
0: अच्छा।
1: एक अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ,
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनकी
0: बिल्कुल
1: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक
1: हाँ,
0: था बचपन,
1: एकता बचपन
0: क्योंकि
1: जरूर
0: ये
1: होगा,
0: जो
1: बिल्कुल
0: बचपन के
1: बिल्कुल
0: जो दिन हैं उनके
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनके नाम ये गाना
1: बिल्कुल,
0: है।
1: जी जी

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो मैं एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एम ए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था। वहां जाकर के घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था। तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में, और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूँ हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में। तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो अमूमर लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया। मैं उस तरफ झुका और फिर गज़लें कहने लगा। अमूमर लोगों को, हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी। मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गज़ल में शामिल हो गया।

0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: मैं जो
1: जी।
0: मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाम। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।
0: मेरे दिल के किसी

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं,
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना, होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम बहुत
0: थैंक
1: खुशनसीब हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: नहीं,
1: मौजूद हैं
0: मेरा
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनसीबी। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी जी
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये, कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा,
1: जी जी बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई, और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा
1: तो ये
0: उसके।
1: बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और अब
0: बात।
1: आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो

0: और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जालंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले।
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
1: कॉन्सर्ट्स होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी
0: उसका हमने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह
0: और उसको प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका
1: बिल्कुल
0: कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है। गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में।
0: संस्कृत में।
1: अरे
0: तो
1: बाप रे
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ कि इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ
0: ये
1: तो बहुत
0: हम
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ, और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में,
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, वो सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज़्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है,
1: क्या बात है। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो वो गाने के
1: संस्कृत
0: तौर
1: से।
0: पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद
1: वाह वाह
0: किया।
1: वाह। तो ये पूरा
0: इसी
1: जयपुर
0: तरह
1: का
0: से
1: दौर था
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी।
0: कालिदास का, तो वो मैंने उसको रेडियो एडाप्टेशन किया,
1: वाह
0: उसको वो किया, तो ये दो बड़ी वो थे कहना
1: क्या शानदार बातें हैं। ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए।
0: चाहिए।
1: इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका नाट्य समूह।
0: हाँ नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही।
1: जी क्योंकि
0: हाँ
1: रेडियो में आप पूरी तरह
0: हाँ
1: से अपने
0: हाँ
1: आपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: हाँ मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी
0: मुझे।
1: और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी जी
0: जो गोगोल का
1: इंस्पेक्टर
0: उन्होंने,
1: जनरल का।
0: हाँ वो नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया,
1: वाह।
0: डायरेक्शन भी किया और वो भी किया
1: तो
0: जनरल।
1: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार
0: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
1: जरूरत।
0: होता था,
1: जी जी
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल
0: हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये,
1: ये मैं करता
0: हाँ
1: हूं
0: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
1: बिल्कुल
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है,
1: बिल्कुल होती है
0: ना, जानते होंगे, विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी, जी।
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो,
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं
1: तो आप उनको,
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ।
0: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ,
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ हाँ,
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था, कोई गाता था,
1: वाह,
0: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया, इनको स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices MSP for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
4: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore rupees। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 lakh metric ton।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 lakh metric ton।
3: The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for production of syngas and its downstream products, targeting gasification of approximately 75 million tons of coal and lignite. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Andhabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. Addressing media, Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav said it will be Indian Railway's first semi-high-speed project planned with indigenously developed technology. The project will be completed up to 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. In Maharashtra, Pune Police has detained a woman in connection with the NEET paper leak case. City Police Commissioner Amitesh Kumar said the woman was detained from Bibwewadi area and was handed over to the Central Bureau of Investigation, CBI, after initial questioning. A magistrate's court in Mumbai has also granted a two-day transit remand of NEET paper leak accused Shubham Kernar to the CBI. Crime Branch Unit 2 of Nasik Police had detained Kernar yesterday following a request from Rajasthan Police. He was produced before a magistrate's court where the CBI sought his transit remand so that he could be taken to Delhi for further investigation. The court agreed and sent Kernar to 2 days transit remand. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today announced the Class 12 board examination results. Students can check their result on the official website, DigiLocker and Umang app by mentioning their roll number. This year, the CBSE Class 12 exams were conducted between February 17th and April 10th for lakhs of students across science, commerce and humanities streams. Punjab School Education Board, PSEB, has also announced the results of Class 12th board examination. According to PSEB Chairman Amarpal Singh, a total of 2,65,417 from 3,817 schools in the state appeared for the examination. Out of these, 2,42,755 candidates cleared with a pass percentage of 91.46. The National Investigation Agency, NIA, today arrested wanted narco-terrorist Iqbal Singh, alias Shera, after successfully securing his extradition from Portugal. Following prolonged diplomatic and legal efforts, NIA said the wanted Hizbul Mujahideen-linked narco-terrorist was taken into custody on arrival at Delhi airport and has been arrested in a Pak-backed narco-terror case. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers meeting beginning tomorrow. Air India has decided to reduce international flights, temporarily suspending services on some overseas routes. The decision has been taken in the wake of airspace curbs and high jet fuel prices. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The match will begin at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
0: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं सायंकालीन भजन।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सायंकालीन भजन कार्यक्रम। में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में अगला भजन।

श्रोता, इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम युवा मंच में, जिसे रोजाना हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं आपकी अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर। जी हाँ, मौसम भी सुहाना सा है, आप भी है, हम भी है, तो क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर इस सफर को और भी हसीन बना लेते हैं। शुरुआत करेंगे इस म्यूजिकल नंबर से। वेल, आज का ये प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ। यूं ही दिल से जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए युवा मंच।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जी हाँ, युवा मंच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। युवा साथियों, किसी परिवार का आधार उस घर में रहने वाले लोगों से मजबूत बनता है और उस घर का माहौल उसके आसपास रहने वाले लोगों से उनके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार और उनकी आदतों पर निर्भर करता है। जब हमारी आदतें अच्छी होगी तो यकीन मानिए घरों के आसपास का माहौल भी अच्छा बना रहता है। लेकिन अगर किसी की संगति अच्छी ना हो तो दूसरों से जल्दी ही वो बुरी आदतें सीख लेता है और ऐसी ही एक आदत है नशाखोरी की। तो चलिए आज युवा मंच में क्यों ना बात की जाए नशा मुक्त भारत एक सामुदायिक लक्ष्य विषय पर। युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि नशा की

ये आदत बन जाती है और नशे की वजह से वो अपना आज ही नहीं बल्कि अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उन माता पिता पर जो अपने बच्चों को यूं नशे की गर्त में जाते देखते हैं। जी हाँ, ये नशा एक इंसान को ही बर्बाद नहीं करता बल्कि एक पूरा परिवार इसका खामियाजा उठाता है। नशे की किसी भी तरह से, यानी कि ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके हमें इससे दूर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। वेल, प्रोग्राम में बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को हम सुनवाते रहेंगे कुछ प्यारे प्यारे से गीत भी आकाशवाणी धर्मशाला पर।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
4: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
6: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
7: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
6: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
7: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
6: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
8: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

श्रोता बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है नशा मुक्त भारत एक सामूहिक लक्ष्य विषय पर। जी हाँ युवा साथियों, नशा मुक्त भारत का सपना केवल हमारी नीतियों में ही नहीं बल्कि हमारे सामूहिक प्रयासों में भी दिखना चाहिए। ये एक तरह का जो है वो राष्ट्रव्यापी अभियान की तरह हमें इसे लेना चाहिए, क्योंकि नशा मुक्त भारत का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना है और इसे एक जन आंदोलन में बदलना है। जी हाँ युवा साथियों, अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए ये नशा हमारी समाज से बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो छूट सकता है और हम इससे दूर रह सकते हैं। इसके लिए हमें नशा मुक्ति के लिए स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में हमें जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि युवा नशे की चपेट में आने से बच सके। इन अभियानों को सामुदायिक केंद्रों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इसमें हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, जो नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा कर सकते हैं। युवा साथियों, जब हम खुद जागरूक होंगे तो हम दूसरों को भी नशे के प्रति जागरूक कर सकते हैं और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में उन्हें बता सकते हैं। और हम ये भी शपथ ले सकते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो नशे के आदि है और उन लोगों की मदद करके उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों तक ले जाने की जो है वो हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। युवा साथियों, नशा एक सामाजिक बुराई है जो परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी कमजोर बनाता है, इसलिए इसे जड़ से मिटाना हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी बन जाता है। चलिए प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक म्यूजिकल ब्रेक का,

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है नशा मुक्त भारत एक सामूहिक लक्ष्य विषय पर। युवा साथियों, हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को नशे से दूर रखें, और साथ ही साथ माता पिता की ये प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, ध्यान रखें कि उनके बच्चे अपने किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे बच्चों के साथ वो घूमते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, और साथ ही साथ उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार से ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये नशा उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम युवा मंच में बस इतना ही। कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त सुनना ना भूलें।

103.4 MHz पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और इस वक्त शाम के 5:55 हुए हैं। ये समय रहता है आप सभी को जानकारी देने का हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय का। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा शाम 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत, और 6:30 पर आनंद लीजिए मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम का। सात बजकर 10 मिनट पर किसान बागवान श्रोता सुन पाएंगे किसान वाणी कार्यक्रम। समाचार हमारे केंद्र से आप सुन पाएंगे 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम, जिसमें बात होगी गीतकार रानी मल्लिक के। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, और 10:30 पर सुनना ना भूलिए सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
2: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते, और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
0: उधर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि आज मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी जानकारी दी गई।
3: 17 मई को एमसी नाहन के इलेक्शंस हैं, तो इस बारे में जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, फर्स्ट रिहर्सल इनकी 27 अप्रैल को की गई थी, तो आज 13 मई को इनकी सेकंड रिहर्सल कराई गई और साथ में हमने ईवीएम रखे जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हमारी पोलिंग पार्टीज कर रही हैं। इस ट्रेनिंग में हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी पार्टीज को कराई है और इनको डिटेल में कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, ईवीएम्स को लेकर उन्होंने क्या प्रिकॉशंस रखनी है, पोलिंग बूथ पे जाकर उन्होंने क्या अरेंजमेंट करने हैं, सीक्रेसी ऑफ वोट कैसे मेंटेन करना, इन सारी बातों पर जो है वो विस्तृत ट्रेनिंग दी गई।
0: उधर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो 2 तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इसी के

0: साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

ये ढलती शाम, ये मदमस्त हवाएं और उस पर गीतों की सुरीली सरगम, जी हाँ, लेकर आ गए हैं हम सदाबहार गीत आकाशवाणी धर्मशाला पर। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत के साथ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

जी हाँ श्रोता, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शागिर्द फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
5: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, इसे लिया है हमने फिल्म शर्मीली से। इस फिल्म में संगीत दिया है SD बर्मन द्वारा। ऐसे ही प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो आप गीत सुने जा रहे हैं वो है लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

श्रोता, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
5: Drive home the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.87 lakhs.
4: Yes, 9.87 lakhs. Offer valid till 30th April only.
5: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month. Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, visit your nearest Nexa showroom today. PNC apply.
3: Nexa.
6: किसान साथियों इसते बाद उन फिर ते जानकारी इन तरफ चल दे।
7: बिल्कुल
6: कहना दिखा केसरू जी तो जो जानकारी दिया कर दे अंता दसा भी क्या आज जानकारी दा विषय
7: दिखा लंबा जी। हां टियाले पर आई करी अपने किसान भाइयों कने जड़ा है से जानकारियां साझा करते रहन दिन कने आज जड़ी है जानकारी से है फसल विविधीकरण कने मृदा परीक्षण दे बारे च। ता किसान साथियों फसल विविधीकरण दा अर्थ तुहा जान देन कि खेतां च सिर्फ एक ही फसल बार बार नहीं उगाना चाहिदी है बल्कि फसलां च जड़ा है बदलाव जोड़ा से करते रहना चाहिदा है। कने इस कने क्या होंदा कि मिट्टी दी उर्वरकता शक्ति जड़ी है सै भी बनी रहिंदी है। कने फसल विविधीकरण दे लाभ भी बड़े सारे होंदे ने। इक तां मिट्टी दी गुणवत्ता जड़ी है सै हमेशा बनी रहिंदी है। कने दूई क्या है कि किसानां दी आय जड़ी है सै भी बढ़ोतरी होंदी इस च। कने कीट कने रोगां दा खतरा जड़ा है सै घट हो जांदा है फसलां च। सोगी दिखा मौसम परिवर्तन दा असर जड़ा है सै घट पौंदा है। कने सब ते बड़ी गल पानी कने संसाधन दा बेहतर उपयोग जड़ा है सै इस च कीता जा सकदा है। कने इस दे अलावा हां गल करनी है मृदा परीक्षण दे बारे च। तां मृदा परीक्षण दे बारे च तुहां जानदे
6: हो बिल्कुल। मृदा परीक्षण किसान साथियों हां साडे मतलब वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं कि दो तीन तीन साल के बाद जरा सू जरूर अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए कि कुछ चीज़ों की कमी साड़ी है मिट्टी होवा करती है। कहना अजकल तो देखा सरकार ने कई सुविधा जड़ियाँ सै मिट्टी परीक्षण के तहत तो जो दी हैं ब्लॉक स्तर पर जाके तो कृषि अधिकारी ने गल कर सकते कि मैं अपनी खेतों की मिट्टी परीक्षण कराना चाहता तो जो सह तथुते भी सुविधा जी उपलब्ध हो सकती है। कहना विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जाके भी तो अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराने की गुंजारिश जी करी सकते हैं। तो इस तरीके कन्नै अगर हम अपनी खेते दी सेहत कदेही है इहदे बारे सानूं पता होगा तो फसल आपू ही फिर ठीक होनी।
7: बिल्कुल अंबरदार जी जी सानूं कई बार अहां भी बीमार पई जांदे ने तां सानूं भी डॉक्टर जिहड़े ने बहुत सारियां टैसट लिखदे ने। टैसट करके पता चलता है कि सानूं च कि जिहड़े विटामिन है या
6: कुछ कमी है शरीर
7: च तां इसकी घाट पूरी करने वास्ते अहां जरूर दवाइयां लैंदे ने। सही हिसाब मिट्टिया का होंदा है तो मिट्टिया च भी कई बार जिहड़ा है कई शक्तियां जिहड़ियां घट हो जांदियां जिस च कई विटामिन मिनरल जिहड़े ने घट हो जांदे ने। तां तिन्हां तत्वां दी घाटा वाधा पता करने वास्ते अहां मिट्टी दा परीक्षण जिहड़ा से करवाई सकदे हां। कने जिहां तुहां दस्सिया कि तीन साल बाद हर तीन साल बाद तुहानूं कोशिश करना चाहिए कि अपनी मिट्टी दा नमूना लेके जा कने तीस दा परीक्षण कराई लिया।
6: बिल्कुल कने मैं भी बोलना चाहूंगा कि मिट्टी परीक्षण दा जिहड़ा नमूना है सा बड़ा विज्ञानिक तरीके कन्नै लैना पौंदा। तो पहले अगर तुहां आपू देना चाहते तो पहले तुहानूं समझना पौना कि मिट्टी कुत्थों कुत्थों दी लैनी है। इस विच भी काफ़ी वैज्ञानिक तरीका होंदा है। तो जरूर साढ़े किसान साथी अपने कृषि अधिकारी ब्लॉक स्तर पर जड़े बैठे हों या SMS जड़े होंगे या फिर तुहां कृषि विज्ञान केंद्र च जाके पूरी जानकारी लेके इसका परीक्षण जरा सा कराई सकते हैं।
7: बिल्कुल जी बिल्कुल।
6: इस गलबात जो जानकारियां जड़ी स गां भी केसरो जी जारी रह गई लेकिन एक बार फिर ते हां शिमले की तरफ अपने किसान साथियों लेके चलना सुनाना है प्यारा दिया लोकगीत।

0: देखा कैसरो जी, इन्हां लोकगीतां दा जिहड़ा नज़ारा ऐसा है अलग ही
1: बिल्कुल
0: तरीके दा
1: अलग ही
0: है
1: तरीके दा हुंदा। कने देखा संजय दा वेला हुंदा, कने इस टाइम जलू हां सुनी लैंदे
0: जी
1: तां बड़ा ही अच्छा लगदा है।
0: लगदा
1: कने मिंजो लगा दा कि अपने किसान भाइयों जो कुछ स्नेह भी देना जरूरी है।
0: बिल्कुल स्नेह देना जरूरी है, तां आवा सुनदे सबसे पहले ये स्नेह।
1: बिल्कुल
2: Inspiration built into every arrival. This may drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nex.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरिया SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ।

0: 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरिस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: लंबरदार जी दिखा हूँ स्नेह यहाँ देते कने लोग गीत भी सुनाई था अपने किसान भाई हैं जो कने इस टाइम में दिखा सारे किसान भाई कई जड़े इनसे घरे आई आते हैं कने बरखा भी लगी है तो भी सारे इस टाइम में अपने खेती बाड़ी के काम कुम करके जड़े ऐसे घरे बैठे होने कने जरूर टियाले दे कार्यक्रम सुना करते होने।
6: बिल्कुल,
5: हाँ फिर तो चलना जानकारी पास
6: जानकारी पास कने एक और गल गलाना चाहेंगे कि भाई किसान बाणी दे ट्याले कन्नै तुसा जुड़ी रहा नौईया जानकारियां खेती बाड़ी ते संबंधित क्या सरकार सांझो स्कीमां दिया करदी नई ते नईयां स्कीमां जड़ियां से इस किसान बाणी दे माध्यम ते तुसा सुनदे रहंदे कन्नै इन्हां जानकारियों अपनी खेतीबाड़ी च भी तुसा इस्तेमाल करदे रहंदे तां देखा जालू भी किसाने ताईं कोई नौई जानकारी नौई स्कीम नवा कोई उत्पाद जिहड़ा ऐसा सरकार मुहैया करांदी है तां इस किसान बाणी दे मौजां गराईंदियां टियाले ते अहां किसान भाईआं तक पहुँचाते
5: रहिंदे
6: तां जानकारियां सिलसिला जिहड़ा सा अग्गे वधदा रहिंदा। तां अज जिहड़ा असां बोलना चाहांगे इक तां मैं खास करके इक गल करना चाहांगा भी जिन्हां भी किसान भाईआं मक्खण घाह वाया है अजकल है ना जी, तां अजकल केसरो जी दिखा मक्खण घाह है ओह बी निकलिया हुंदा।
5: अच्छा।
6: तो सां तिसी जड़ा बी 800-900 रुपये किलो जालू बाहने टाइम हों तालू मिलता है ये बी तो अपने घर तैयार करी सकते इस बी मतलब उपरे उपरे तो सिलियाँ कट्टी लिया कने तिसी सुकाई बनाई के जो संभाली के रखी लिया तो 700-800 रुपये किलो जालू सो मौसमें पर लैना पौधा तो इसकी फायदा जरा अजक लैने टाइम चलिया कने ये मक्खण का वधिया कटाइया दिता कने बीज भी सो मिली जाता तो सो दुगुना फायदा हों इस है ना जी। तो यह तो हुई गल मक्खण का दू दूई गल जी अजक हरा चारा बीजने का टाइम जरा सभी लगे समय कि चरी बाजरा बाही सकते तो हाँ जितनी जल्दी बांगे अपने पशुधन जो हरा चारा जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाता है ना जी। कने केसरू जी दूई गल अपनी जी साग सब्जियां की बाटिका है तिसे तो हाँ हरा भरा करी सकते अजकल मतलब जी भिंडियां तो बाही सकते फ्लास बीन लगाई सकते फिर बेल वर्गी सब्जियां खीरे करेले डानी है ना जी बैंगन तो कई तरह दिर्चा जीयां ने यह सारिया चीज़ा तो अपनी खेती बाड़ी च सजाई सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: तो इन गलों का अगर अस ध्यान रखिए तो आने वाले टाइम में अं अपनी फसल जी है खाई सकते हैं कने अपने पशुधन जो हरा चारा जरा उपलब्ध कराई सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: अजकल चारा भी जरा महंगे तो महंगा हों जा करता अगर अं मुले के चीज़ा पर रहेंगे तो अं उतना फायदा जरा नहीं ले सकते जितना अं आपू उगाई के अगर फसल सो घट दाम पर मिलती है कने ज्यादा फायदा अं ले सकते हैं।
5: बिल्कुल लंबरदार जी बिल्कुल ठीक गल गलाई कि सब्जियां जी अपने घर तैयार करना चाहिए अजकल बेल वर्गी जी सब्जियां इनसे लगाई सकते हैं और कई बार कई किसान सांझे बोलते हैं कि सांझू वाल जगह नहीं है तो दिखा थोड़ी दी जगह हो या थोड़ा दे थोड़ा वाल कोई समान है जी डब्बे डुब्बे कई बार खाली रही आते तो हाँ सुटी देते तो इन्हों का इस्तेमाल करके भी तू अपने घर भी साग सब्जी तैयार करी सकते।
6: बिल्कुल, कने अजकल दिखा केसरू जी मौसम चलिया है गर्मियों का तो इन दिनों साड़िया किसान भैन जड़िया खाना खूना बनाई के संझा का घड़ोलू एक बाई का या सूड़े का लेके आते क्या ठंडा पानी पीने का जड़े ये अजकल नौ ढकोसले चली पी फ्रिजा फ्रुजा दे 100 बीमारियां लगा कर दी तो हाँ नाड़िया का कने बॉडिया का पानी पिया क्या नज़ारेदार मजा है कने भुख भी खुड़ती कने कई बीमारियां तिस्ते दूर होनी तो हूं अह संझा का बेला एक बार फिर ते अपने किसान साथियों के प्यारा दिया लोक गीत सुनाना है तो आवा लैंदे नज़ारा इस लोक गीत
5: जी।

0: किसान साथियों संजय दिया बेला चे प्यारा दिया लोक गीत तो पसंद आया होना। इसी कन्ने मौजा ग्राई दिया कार्यक्रम इतनी संपन्न हो करता है। संपन्न करने से पहले तुझे दसीए भी इस कार्यक्रम से सू तकनीकी सहयोग दिता बिपिन शर्मा ने कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है
1: जितेंद्र सिंह पाल
0: जी। तो इसी कन्ने ट्याल दे लंबरदार
1: कने केशव दया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे मौज अग्रा इंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or MSP

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुना करते सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार की तरफ से राम राम कने केसरू जी तुहानू मेरी तरफ से राम राम
1: लंबरदार जी राम राम कने किसान भाई भैन जो भी केसरू दो हाथ जोड़ी करी राम राम
0: बिल्कुल कने दिखा भी साढ़े किसान साथी जड़े हैं संजय दी वेला इस वेला जड़ा ऐसे अपने अपने मंजोलू बाहर डाई के जड़ा सब बेही आंदे ने
1: बेही आंदे के अज बरखा थी तो थोड़ी देर बाद निकले हुन जरा बरखा रुकी है ना हम
0: कोई है
1: हम कोई है कने हुन लोग जड़े से बाहर निकलन लगे हैं थोड़ा सैर सपाटा भी करा दे गपशप भी मारा दे ना जी
0: तो दिखा हाड़े टियाले पर भी रौनक जड़ी ऐसे लगा कर दियां भई लोग जांदे हुंदे सन जो दुसा करदे
1: ना करते हैं कने अपने काम कुम करते भी दूसरा
0: बिल्कुल कने एक और गल हाँ गलाना चाहेंगे ये जरा घूमन फिरन है ना अजकल साड़ियाँ किसान भैन भी सवेला सवेला रोटी पानी बनाई के जरा ऐसा बाहर निकल दियां तो ये टाइम जरा है जियाँ बी जरा ऐसा हड़ा हाँ देसी बी कोई खीरे का रखिया कोई डानी रखी हो कोई घिया रखिया तो एक ही दुए बंडने का भी समय जरा बड़ा बढ़ी है
1: अजकल देखा किसान भैन जी होंगी ना कुछ घर चली जाए कने बी नजर आई जाए ना तो बोली
0: अजकल दिखा केसरो जी टाइम सह आई गया दुकाना च तुहां जा तो उंगली पर गिनी गिनी बीयां दिया दिया कर दे जड़े असां इक्की दुए मुठी भरी भरी दे इंदे थे सह जड़ियां ने सह कने कीमत भी तिना दी रज्जी के लिया कर दे से है ना जी
1: कने चार दाने दिस च बी
0: चार दाने
1: कने च कोई दो निकलने तीन निकलने
0: नहीं कने ऊपर ते क्या भी इतनी की छोटी पूड़ी हुंदी पर रस्ते च टिरी जाए है ना जी ता गल ही है भी साडा जड़ा अपना बर्तन है ना ग्राए दा इक ही दुए ने लैण देने दा मेरे हल जा अगर खीरे दा बी है तुहाडे हल घीए दा ता इक दुए लैण देण जड़ा चलदा रहंदा था इस कने इक साडियां पुरानियां फसलां थियां जिन्हां च रोग नहीं लगदे थे जड़ियां फसलां मतलब पूरी कीमत कढ़ी के जांदियां थियां सहदे बी खत्म होई गए है ना जी
1: क्योंकि अस संभाले
0: बिल्कुल
1: पुराने बड़े बुजुर्ग जो संभाली संभाली डब्बुआ च रखते शीशियां च रखते
0: बिल्कुल तुहां ठीक लाया भाई को बजारे पर तो निर्भरता 0% थी है ना जी हरेक चीज जड़ी है सै हरेक किसान अपने अल हरेक तरह का बीज जड़ा सा संभाली के रखता था जियां हुन अग्गे हां गल करिए तो साढ़े पुराने मां होंदे थे जड़े बीड़ां पर बांधते थे हुन तो दिखने नहीं मिला करते अपने ताई फसलां जड़ियां थी लगभग असां जड़ी सै कढ़ी लैंदे थे अगर हां गल करिए हल्दून घाटी दी ना जड़ा सा डैमे दा एरिया तो बोलते हैं ना भाई तेथू तो इतनी फसलां उगदियां थी कि भाई सिर्फ नमके की जरूरत पौंदी थी बाहर लैने की बाकी सारिया फसलां जड़ियां थी साढ़े पौंग डैम मोस्ती जड़े थे सह आपू उगांदे थे कने अज भी तुसां दिखा भी राजस्थान हट्टी बंजर इलाके तिना हरियाली फैलाईती तिना ये तिना लोगों की हल्दून घाटी दिया लोगों की मेहनत है तो अज भी साढ़ा किसान जड़ा है अगर ये प्रण कर लै कि अहां अपने पुराने बीज पुरानियां फसलां ये सारिया सहेजी के रखनियां तो कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है फिर तो अहां जी 0% खेती अज विज्ञानिक बोला करते सह साढ़े किसान
1: बिल्कुल एक शौक होना चाहिए कने एक लगन होना चाहिए अगर लगन है शौक है कुसी काम जो करने दा कने हाँ अगर मेहनती हैं कने कुछ करके जानना जानते हैं कि भाई यहाँ करना ही है तो जरूर से काम हो ही सकता है
0: बिल्कुल हो ही सकता कने खास करके मैं अपने किसान भाइयों ने बोलना चाहूँगा कि कुसी ना कुसी तरीके कने अपनी युवा पीढ़ी जो अपने नौजवान बच्चे हो कुछ समय कढ़ी के अपनी खेती बाड़ी ने जोड़ा ताकि सभी कुछ तुहाड़े तजर्बे जड़े से तुहाड़े दिखी के सीखी लैन ताकि आने वाली साड़ियाँ खेती बाड़ी जड़ी सा हरी भरी बनी हो रहे तो यह गलबात असा गांव भी जारी रखिए दिखा केसरो जी वे मुझे लगा करता तो हाँ कुछ चुप होवा कर दे मैं तो लोक गीत सुना
1: जी मैं तो इशारा ही करा दी कि लोक गीत पासे नहीं चला दे हाँ
0: जी बिल्कुल चलते
1: सुनते हैं प्यारा दिया लोक गीत
0: बिल्कुल तो लोक गीत हाँ सुना कने आवा सुन दे प्यारा दिया लोक गीत

0: किसान साथियों, इस लोकगीत जो संजय दी बेला सुनने का जरा आनंद मैं
1: जी
0: बोलगा केसरो होरा लिया है सा कोई नहीं
1: बिल्कुल जी
0: लिया है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: कने बड़ा ही प्यारा गीत था, कने दिखा पार लिया बनिया जलू मोर बोलता ना, कने
0: आहा
1: कुसी ने कुसी दी याद जड़ी ऐसे आई आंदी है।
0: बिल्कुल, तो ठीक लाया भी इस प्यारे दे लोकगीत के बाद हूँ अहाँ फिर तो जानकारियां जी अहाँ अपने किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं।
1: जी जी
0: तो अज भी एक जानकारी अहाँ थोड़े तक पहुँचा करते हैं किसान साथियों, एक उन्नत किसान की। तो
1: जी
0: आओ सुनते ये क्या तजर्बे अपने साझा करा करते साढ़े कन्ने
1: जी
0: कन्ने किए किए खेतीबाड़ी करा करते, तो आओ सुनते इन्हों के तजर्बे।
2: किसान साथियों, साड़ी ये कोशिश होंगी कि असा ट्याले पर तुहांजो नित नई जानकारी पुजाइए, और इस वास्ते कदी कदी असा अपने ट्याले पर कृषि विशेषज्ञां जो विज्ञानिकां जो और कदी कदी अपने अनुभवी किसानां जो ट्याले पर सद्दी लैंदे ने। तां अज असां दे ट्याले पर एक उन्नत किसान आयो न, आवा जानदे न इन्हां दी खेतीबाड़ी दे बारे च। हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
2: जी अपना नां दसने हो कने कुथु दे रहने वाले तो? हाँ
3: मेरा शुभ नाम राम सिंह जी, गांव मेरा शमीरपुर है जी, पोस्ट ऑफिस शमीरपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जी। मतलब जिले शमीरपुर ग्राएं च अहां दबारी अपनी जमीन कुंजा काली साड़ी तीन भरा दी सहवी है। एक मैं डुग्यारी मतलब ताइक नाल जमीन लग मुल लियो, जहाँ च मैं मतलब सब्जी वगैरह उत्पादन रखिया, मशरूम प्लांट लगाया
2: जी,
3: कन्या डिंगरी का काम भी कर दे, बगीचा भी लगाया, तीन टैंक मैं मछलियां भी बनाए, मच्छी तालाब भी बनाया जी। उसके बावजूद सब्जी वगैरह लगाते, कणक भी थोड़ी बहुत बाई दे, इबे पूरे पूरे एरिए 20 कनाल च मैं सरसों बाही हुआ है। 27 कनाल का जो प्लॉट मेरा डुग्यारी, मैं ज्यादातर तिथि रहा।
2: राम सिंह जी, तुह अपनी जमीन के बारे सू दसिया कि
3: जी
2: देखा 27 करनाल जमीन थोड़ी
3: मेरी, हाँ जी
2: डुग्यारी च
3: डुग्यारी
2: है ना, जा कुंजा करनाल जमीन जी है थोड़ी समीरपुर च है।
3: हाँ जी।
2: तो इतनी सारी जमीन च सारी खेतीबाड़ी करते, मतलब सारी बीजी होती, कोई
3: हाँ
2: खिल्ला
3: हाँ
2: तो नहीं पाई
3: ना,
2: क्या?
3: खिल्ला नहीं पाया जी।
2: मतलब कोई खेतर खिल्ला नहीं है, कने सारी जड़ी ऐसे तो हाँ जुताई
3: जुताई कर
2: की हो, कने
3: जी
2: सारिया
3: जी
2: च
3: जी
2: फसला लगाई
3: जी
2: हैं,
3: जी जी
2: बड़ी बाकी गल है सारी जमीना च जड़ा ऐसे खेतीबाड़ी करा कर दे।
3: जी जी
2: क्योंकि कई बारी असा देखते हैं आते जाते रस्ते च, तो कई लोग जड़ी ऐसे अपनिया जमीना खिलियां पाई थी है
3: हाँ
2: ना।
3: जी हाँ जी हाँ जी।
2: और
3: मेरा विचार ही इस तरीके थी कि खेती बाड़ी करिए, हम उतरे दुबारी मतलब ये जमीन वगैरह लीओ, कने दुबारी खेती करा दे, सब्जी उत्पादन नहीं करा दे, बाकी
2: अच्छा
3: यहाँ मशरूम का भी कर दे, डींगरी का भी ऑर्गेनिक है, ये केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर दे। हाँ जी हाँ जी।
2: राम सिंह जी, तुहां खेती बाड़ी की गल करा दे, तो जी तुहां जमीन है डुग्यारी च है, ये पानी लग है?
3: हाँ जी पानी लग है, पर हाँ अपने टुल्लू पंप भी लगाए, मोटर भी लगाई है, इंजन
2: अच्छा
3: भी रखे मैं
2: मतलब
3: मतलब
2: सिंचाई दी जड़ी
3: हाँ
2: ऐसा
3: अपने
2: बढ़िया
3: हाँ पूरी फैसिलिटी है दुबारी
2: जी,
3: मतलब।
2: बिल्कुल बढ़िया
3: हाँ
2: जी।
3: जी हाँ जी।
2: तां इस वक्त साग सब्जियां दी यहाँ गल करा दे, तां साग सब्जियां च क्या कुछ लगाया तो हाँ?
3: इस टाइम मूली लाई यही, गाजर लगाई यही, मटर लगाया जी, हल्दी लगाई हो मैं ऑर्गेनिक ऐसा भी जी,
2: अच्छा
3: अरबी लगाई हो है, अरबी दे लाई, बाकी कोई 20 कनाल च मैं सरसों बाई हो है। हाँ उसके अलावा दुबारी मतलब बाकी तरली है, तरली मैं पूरी बाउंड्री च लगाई हो सारी, जितनी भी जमीन है सारी, ते जो साइड च मैं जो वृक्ष वगैरह लगाए इनके कुछ और भी दुबारी कुछ सैतूत वगैरह के बूटे भी हैं मेरे हल, तिना ढक्का ढक्का मैं तरली पूरी बाउंड्री च लगाई दा 27 कनाल ची, ते
2: अच्छा
3: इबे भी मैं तरली 180 रुपये पर केजी दे हिसाबे दुबारी मेरी तरली बिकी गई, तकरी मैं कोई 50-55 हज़ार की तरली भी बेची जी। बे
2: अच्छा
3: मशरूम डेली जे ऐसा सारा डेली दा डेली चली रहा, अहां दुबारी इस टाइम 600 की बैग रखे जी।
2: अच्छा
3: हाँ जी। ते इस बिच ये है कि डिंगरी दे भी बनाए अहां कोई 25-30 बैग डिंगरी दे बनाए, छोलन ते अहां ट्रेनिंग भी की, मशरूम भी तो थोड़ी बहुत दुबारी मतलब जिस टाइम खाद बनाते उस टाइम तो यूरिया वगैरह कने बाकी होर चीज़ कुछ पाते सह दुबारी ते खाद बनाने वास्ते, पर डींगरी एक ऐसी चीज़ है जेड़े कि अहां सिर्फ पानी सेड़ना होंगे तूड़ी जो, या दालों की तूड़ी सेड़ लीए, या दुबारी छलियां दी गुलमां पर भी बनी जाती डींगरी, या किसी भी किस्म की दाल हो तीदी तूड़ी कितने भी डींगरी बनी जाती, इस बिच दालों वगैरह भी लगाते, कुल्थ वगैरह भी लगाते हैं जिस तरीके अपनी जमीन डींगरी का मशरूम का बाकी कैंचुआ खाद प्लांट लाए हो मैं ऑर्गेनिक खादा दुबारी जी गन जीवामृत वगैरह, जीवामृत वगैरह ये भी अहम अपने खुद ट्रेनिंग का कितनी है उस।
2: जी। राम
3: जी
2: सिंह जी,
3: जी जी
2: तुहां बड़े अच्छे खेतीबाड़ी च काम करा दे, कने इतना सब कुछ जड़ा ऐसे अपना खेतीबाड़ी च लगाया, कने कने तुहां मशरूम उत्पादन डींगरी उत्पादन दे बारे च भी गल करा दे।
3: जी जी
2: तां राम सिंह जी, तुहां सांझो ये दसा थोड़ा देया कि भई ये जड़ा मशरूम उत्पादन है या डींगरी उत्पादन है,
3: जी जी
2: इस दे बारे च तुसां यो जड़ा ऐसा कुतु ते प्रेरणा मिली कि भई इस विच जड़ा ऐसा अगर अस खेतीबाड़ी करते हैं इसकी तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता। कने कियां तुहां सोलन पुजे ट्रेनिंग लेने ताए कियां तुहां विभाग कने जुड़े ये सारा जिहड़ा
3: विभाग कने के भी कांगड़े च ये सांझो प्रोग्राम हुंदा के भी कांगड़े वाले सांझो सद्दे रहिंदे महाविश्वविद्यालय वाले जी तालनपुर वाले भी सद्दे रहिंदे सांझो कि एग्रीकल्चर वाले ब्लॉक रैत पाउंदा रैत वाले भी सद्दे रहिंदे हॉर्टीकल्चर वाले भी सद्दे रहिंदे जिस टाइम जायका वाले दा कम चलिया हा अफगानिस्तान की 13 आदमी की टीम आई थी
2: अच्छा
3: दिल्ली की मीडिया की टीम आई जापान दे दबारी मेरे 3 बारी आई चुके मतलब 5-5, 6-6 आदमी कहते थे प्रोग्राम किसान मेला भी करते रहे मेरे हल तिथि आएगी।
2: राम सिंह जी थोड़ा जहा तुसा अपने प्रशिक्षण दे बारे च दसने
3: हो सर्टिफिकेट भी लेंदे जी।
2: अच्छा जी
3: मैं 2 बारी मैं पालनपुर की थी पोलियो हाउस भी लगाए मैं पहला 4 पोलियो हाउस 1000 स्क्वायर मीटर पोलियो हाउस भी लगाए थे फिर बाद मैं पोलियो हाउस उखाड़ लिए हुए अजकल जितनी ज्यादा तादाद भी रखिए कमाने तो ज्यादा कमाए सकते पर गल एक मार्केट च बिकना भी चाहिए तो हाँ क्या करते कि हाँ दुकान दुकान च सप्लाई करी दे या हाँ अपने मोटरसाइकिल पर घर घर जाए
2: राम सिंह जी अहां गल कीती मशरूम दी डिंगरी उत्पादन दी खेतीबाड़ी दी साग सब्जियां दी अहां गल कर ली
3: जी
2: इस ते अलावा हां अगर बाग बगीचे दी गल करिए तां बाग बगीचे भी होने तुहाडे हल
3: हां जी इस टाइम मेरे हल कोई 35 की अमरूद चले जी 8 मेरे हल इस टाइम जापानी फल न 15 की मेरे हल अखरोट चले उस ते अलावा आड़ू न 12 बूटे आड़ू दे थे पलम थे मेरे हल 15 की बूटे पलम दे थे इस ते अलावा नींबू भी अन लगाए मैं जी सेब लगाए मैं हां जी 60 बूटे मैं लाए हे तां 2 बूटे टिके रहे बाकी तां खत्म हो गए की भी लाया हम
2: नहीं। राम सिंह जी तुसा कदी अपनी जमीना दी मिट्टी दी जांच भी करवाई?
3: जांच तां नहीं करवाई मैंने
2: जी अपनी जमीना दी मिट्टी दी जड़ी जांच है से जरूर करवाई लेना चाहिए दी कने ते इसते ही सांजो पता लगदा कि साड़ी जमीना च किना तत्वां दी जड़ी ऐसे कमी है और कौन तत्व जड़े ऐसे सांजो जरूरत है ना
3: ठीक है।
2: इस तरह अगर हां अपनी जमीना दी जड़ी मिट्टी है ते इस दी जांच करवाई के खेतीबाड़ी कर देन
3: जी जी
2: तां मैनूं लगदा है कि जिहड़े तुहाडे पेड़ पौधे सुखने की जिहड़ी समस्या है ये शायद खत्म हो सकती। जापानी फल भी हैं कने अमरूद भी हैं तो इन्हों की जिहड़ी ऐसा कितनी एक पैदावार होंदी?
3: इन्हें पैदावार काफ़ी हो जाती जी मतलब ठीक लगते कने कुछ बूटे जिहड़े मेरे हाल ऐसे ऐसे 12-मासी भी हैं शायद अजकल भी लगे हैं।
2: राम सिंह जी इसके अलावा हाँ गल करिए पशु पालन की तो पशु पालन च भी होना कुछ ना कुछ
3: पशु पालन च भी है गाय रखी मतलब
2: कितनी गाय
3: 3 गाय जी
2: अच्छा सुइयां ने के
3: हाँ जी 2 सुइयां इस बीच दुध इस्तेमाल करते परिवार ची इस्तेमाल करते थोड़ा बहुत बिकी भी आंदा।
2: इसके अलावा और जड़ा तुहां अनुभव बाहर सीखी के आए कोई ट्रेनिंग ले के आए सह तुहां साढ़े ने साझा करना चाहते हो?
3: हाँ जी भाई जो ट्रेनिंग दिखा एग्रीकल्चर च ले एग्रीकल्चर वाले ने साझो मतलब जिस तरीके ने दबारी मतलब महाविश्वविद्यालय च पालनपुर गए तो पालनपुर वाले साझे मशरूम की ट्रेनिंग दी मशरूम के बाद दबारी मैं पशु पालन विभाग वाले की भी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट भी दी थी ना सांझो मतलब
2: जी
3: 5-5 दिन की ट्रेनिंग कभी 3 दिन की ट्रेनिंग छोलन गए हाँ 2 बारी गए एक बारी डिंगरी की ट्रेनिंग करने वास्ते गए एक मशरूम की एक भी मतलब फिर हाँ एक स्टाका मशरूम की ट्रेनिंग की
2: जरा मछली पालन वास्ते तो हाँ टैंक भी बनाए
3: हाँ जी
2: तो ये मछली पालन कितना क्या थोड़े
3: मछली पालन मेरा पिछली बारी भी कम से कम 400 क्विंटल इतना 1.5 लाख रुपया सब्सिडी भी दी मुझे मछली पालन भी बगा लिया। हाँ जी
2: राम सिंह जी इसके अलावा तुहां गल करा दे कि भाई समीरपुर च तुहाड़ी पुस्तैनी जमीन है ना
3: जी, जी।
2: तिस
3: हाँ कणक दान वगैरह इस्तेमाल करते हैं थोड़ी बहुत सब्जी लगाते अपने खाने पीने जोगी मतलब
2: अच्छा
3: हाँ जी
2: जी तुहां फसलां लगाईयां ना
3: जी जी
2: तिस विच बीज वगैरह
3: जिन्हें सरसों लगाई तो सरसों के बी के वाले दी ही मुझे 20 कनाल जो जी 20 कनाल दबारी सारी सारी सरसों के बी के वाले की लाइयो कभी एग्रीकल्चर पालनपुर से मंगा लेंदे हाँ दबारी मतलब महाविश्वविद्यालय अपना बीज जैसे काफ़ी तादाद च हाँ जियाँ तड़ी का बीज साढ़े वाला अपना आता मटर का बीज अपना आता बाकी गेहूँ हाँ अपनी रखी लेंदे बीज बाकी होर कई ऐसे दबारी सब्जियां तिना दे भी हाँ अपने बीज कर लेंदे तैयार मन बीज।
2: अच्छा राम सिंह जी तुहां ए तरड़ी दी जड़ी गल करा दे
3: जी जी जी यहाँ लगा देना शुरू करी थी हाँ ये जो लगाते हाँ अपने कैंच खाद वगैरह इस्तेमाल करते बाकी पत्ते जड़े मतलब जितने भी होंगे मैं पातरी वगैरह होंगे हाँ ते रुखा टक्का लगाते फिर तीस भी सांझो मेहनत नहीं पाती ज्यादा तरड़ी लगाई ती डोती फिर रुखा बेली आपू गो जानी है अब ज्यादातर हाँ जो लगाते रुखों का टक्का लगाते कहीं दबारी साइड साइड लगाते ताकि मतलब सांझो घट मेहनत पवा तो हाँ चार पाँच पाँच छे छे किलो की तरड़ी भी कड़ी कड़ी लेंदे पीसी कोई कोई जी काफ़ी ज़्यादा तादाद लोग जो सदी ने पता कि साल ऑरगैनिक तरड़ी है तो बारी लोग आपू भी आई जी लीन साढ़े वाले
2: अच्छा
3: तो हूँ मैं तेना कुछ लाए थे दो की क्रेट लगाए थे हल मेरे हल कोई डेढ़ की क्रेट हल हो रुपया मेरे हल लगाने मतलब बीज का
2: इसते भी जड़ा ऐसा काफ़ी आमदनी
3: हाँ इसते करीब मतलब 180 रुपये पर किलो बिकती रही मेरी जी थी
2: चलो बड़ी बाकी गल है जी। अच्छा राम सिंह जी ये सारा कुछ तू संभाला देता इस विच तुहाड़ी कौन कौन मदद करता परिवार च भी
3: समीरपुर ज्यादातर रहना मैं ज्यादा लेबर वगैरह इस्तेमाल कर लेंदा ते नहीं भी चलो रोजगार मिली जाता सारा काम भी हो जाता मतलब
2: इसी कड़ी चाहां तुहाड़े ते एक संदेश जड़ा ऐसा आने वाली पीढ़ी वास्ते लेना चाहंगे कि क्या कुछ करना चाहिदा
3: भविष्य बारे की तदबीर तकदीर जो बदली जी तो गल यह है मेहनत करने ते बारी हर काम हो जाता कि जेड़ा चाजा है डबाए दी तूफान बोलते जेड़ा तूफान ने टकरा तुम इंसान बोलते तो गल है नौवीं पीढ़ी जो हाँ तो यही संदेश देंदे कि सच्ची मेहनत करा सच्ची मेहनत करके तो खेती बड़ा कुछ है 1.5 लाख रुपया पर मंथ से बड़े आरामे ने कमाई सकते मतलब जे नौकरी नहीं मिलती है तो अपनी एग्रीकल्चर साइड च आई जा बगीचा लगाई दिया बाकी मशरूम प्लांट बारी घर बैठे डींगरी का कम है रेशम दियो तो गल कम करने ते बारी हर कम च फायदा है पर है तो करने ते ही
2: जी। राम सिंह जी तुहां अपने अनुभव साढ़े ने सांझा किए ने तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
3: धन्यवाद।
0: किसान साथियों ए उन्नत किसान साढ़े राम सिंह जी ने बड़े अच्छियां गल्लां जड़ियां दसियां कने की आदमी खेती बाड़ी ते जड़ा सोना उगाई सकदा ये सारियां गल्लां ते इन्हां दसियां कने उइयां भी दिखा केसरो जी गलांदे हन ते बेले आदमी ते बोलदे पे अपने कपड़ियां फाड़ी सींदे रहे है ना जी। तो इस तरीके ने अगर अस सोचिए तो खेती बाड़ी जो अगर अस अपनी करते रहिए तो फायदा जड़ा सा अस ले सकदे कने अजकल पढ़िया लिखिया किसान पढ़िया लिखिया युवा जड़ा सा अपनी तकदीर जो बदली सकदा
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। इस गलबात रौनक की तरफ कने सुनांदे अपने किसान साथियों एक और प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।

0: किसान साथियों तातु हाँ सुने ये प्यारा दया लोक गीत और इस लोक गीत दे बाद लंबरदार जी हुण हाँ चलना है सब्जी मंडी दे
1: भाव
0: भाव दे पासे तदी कहते ना जी क्या भाव रे आलू अज रहा 8 ते 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज रहा 18 ते 22 रुपये टमाटर रहे 12 ते 16 रुपये लहसुन अज रहा 100 ते 120 रुपये प्रति किलोग्राम अदरक रहा 120 ते 130 रुपये कने शिमला मिर्चा रही 14 ते 16 रुपये खीरा रहा 10 ते 14 रुपये मटर रहे 50 ते 60 रुपये प्रति किलोग्राम इस कने फुल गोभी रही 25 ते 30 रुपये बंद गोभी रही 8 ते 10 रुपये बैंगन रहे 10 ते 20 कद्दू रहा 10 ते 15 मूली रहे 10 ते 20 हरी मिर्चा रही 35 ते 40 हरा धनिया रहा 40 ते 50 रुपये भिंडी रही 25 ते 30 रुपये कने इस कने ही फलों की गल की जाए तो सेब जड़े से आज रहे 110 ते 140 रुपये केला रहा 40 ते 50 प्रति दर्जन अनार रहे 120 ते 140 अनानास 40 ते 50 अमरूद रहे 70 ते 80 कने पपीता रहा 35 ते 40 कने इस कने अंगूर रहे 100 ते 130 रुपये
1: जी तो ये तो थे कांगड़ा सब्जी मंडी दे भाव कने इस दे बाद फिर ते टियाले पर समय होया एक प्यारे दी रौनका दा ता आवाज सुन दे कने सुनांदे प्यारा दिया लोकगीत।

0: किसान साथियों संजय दिया बेल च प्यारा दया लोक गीत तुहानू पसंद आया होना कने खूब रौनक तुहाड़े घर च लगी होनी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दिखा केसरू जी भई इसी कने साड़ा कार्यक्रम जड़ा सा संपन्न हुआ करदा। तो तुहानू दसीए भी इस कार्यक्रम च सानू तकनीकी सहयोग दिता बिपिन शर्मा ने कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने
1: गरेंद्र पाल सिंह कने हुण अहां दोनों जदे आ जितेंद्र पाल सिंह कने हुण अहां दोनों जदे आ अनुमति। अच्छा जी,
0: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे।
1: अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:45 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी रिले किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला, रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जा

0: बारी और बारालाचा लादर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से कार पूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, पैदल चलने व साइकिल चलाने को बढ़ावा देने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को चार दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी चार दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।
1: अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश के महिला हितों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर के और जो सरकार ने जो गायनी की ओपीडी आईजीएमसी के लिए शिफ्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल की थी, जिसमें आज पूरी तरह से माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो फैसला है माननीय हाई कोर्ट का, इसका स्वागत करती है और महिलाओं के हित में जो हम लोगों ने पिछले एक महीने से लेकर के जो आंदोलन किए हैं ये आज उसकी जीत है।
0: कर्नाटक के मैसूर में आयोजित विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के एक समान मॉडल विषय पर आधारित बैठक आज संपन्न हो गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहन व विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये समिति दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को सौंपेगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि यदि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय प्रणाली के कार्य संचालन में एकरूपता आ जाए तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विधानमंडलों में चलने वाली संसदीय नियमावली पर प्रकाश डाला और इसकी देशभर में एकरूपता की जोरदार पैरवी की। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की एक तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो दो तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉक्टर राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
2: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
0: उधर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज मंडी नगर निगम के तहत टारना, नीला और अन्य स्थानों पर चुनाव अभियान तेज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंडी में जनता पर नगर निगम थोपा और पूर्व जयराम सरकार ने केवल सराज क्षेत्र का विकास ही किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। करीब 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी इकाई के संयुक्त प्रयासों से इस महत्वपूर्ण मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि अगले 3 दिन तक यदि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य रही तो इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के खुलने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
4: डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौल स्पीति एंड बीआरओ के 70 आरसीसी के लगातार एफर्ट से हमने 12 लच्छाला खोल दिया है जो कि 16,000 से ऊपर की फीट पे है और ये लोगों की सुविधा के लिए हमने खोला है। इससे ले हमसे कनेक्टेड हो चुका है, अभी ट्रायल चल रहा है तो अभी 3 दिन के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल हम अलाउ करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स और जैसे ही इसको सेफ पाया जाएगा तो हम हैवी व्हीकल भी इसमें अलाउ कर देंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला। रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी और बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला। पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर लीजिए पेश है देशगान।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हम विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस।

आज के सबरस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ। आप भी आनंद लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए सबरस।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ आप बने हुए हैं और इस वक्त सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे वडाली ब्रदर्स को।

0: वो जो बैठी,
1: कौन
0: वो जो बैठी है? वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठी है।
1: देखो बड़े भैया की नजर कहाँ चली गई, आश को होने लगा है। क्या है?
0: वो जो बैठी है।
1: कौन?
0: वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठी है। कोई जाके उनको कह दो।
1: क्या कहूँ?
0: कोई जाके उन...

श्रोता, इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोता, इसी के साथ देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। कीजिए बस कुछ पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन

0: मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित

0: करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार
1: यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. कैबिनेट

जी हाँ, एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है गीतकार रानी मल्लिक के बारे में। आपको बता दें कि रानी मल्लिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक लोकप्रिय गीतकार रही है, जिन्होंने 90 के दशक में कई सुपरहिट गीत दिए। आपको बता दें कि रानी मल्लिक एक बेहद ही पॉपुलर शायरा थी। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिंदी फिल्मों के लिए खूबसूरत गीत लिखे। उन्होंने आशिकी फिल्म के लिए जो है वो गीत लिखकर अपने करियर की शुरुआत की, और इसके बाद इस फिल्म का गीत धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना जैसा मेलोडियस एवरग्रीन गीत जो है वो रानी मल्लिक द्वारा लिखा गया। आपको बता दें कि अगले ही साल उन्होंने अजय देवगन और मधु की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के लिए भी गीत लिखा, जो कि उस साल का सबसे सुपरहिट गीतों में से एक गीत माना गया। श्रोता, रानी मल्लिक 90 के दशक की एक प्रतिभाशाली महिला गीतकार थी, जिन्होंने कई एवरग्रीन हिट गीत जो है वो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उनके सबसे पॉपुलर गीतों में से आशिकी फिल्म से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जिसे उस वर्ष का 36वां फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया, और इसके अलावा फूल और कांटे फिल्म से तुमसे मिलने को दिल करता है और बाजीगर फिल्म से छुपाना भी नहीं आता जैसे गीत उनके द्वारा लिखे गए। कार्यक्रम में और भी आपसे बातें होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये गीत।

श्रोता, एक ही कलाकार कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है गीतकार रानी मलिक के बारे में। उनकी अगर कुछ हिट फिल्मों की अगर बात करें तो उनमें शामिल है आशिकी, फूल और कांटे, बाजीगर, जान तेरे नाम और गुंडागर्दी जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। फिलहाल कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आशी की फिल्म के इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे चर्चा का विषय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन 80 दिन 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
0: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है
1: जी।
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक

0: इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से, हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है। लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय

0: ये रहने वाला है, उस सब का यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री के ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद ब्लड से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि

0: अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप सुन रहे थे चर्चा का विषय है कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे रूपक।

पठानकोट नूरपुर मार्ग पर जसूर के पास से एक खुली सड़क कांगड़ा दिशा में जाती है। इसी मार्ग पर जसूर से लगभग 26 किलोमीटर दूर एक पठार पर 3 मंजिला विशाल एवं भव्य महलों के अवशेष मिलेंगे। ये ज्वाली के महल हैं। पकी सुर्ख ईंटों और चूने तथा सुर्खी से बनाए गए महल कभी इस इलाके के सौंदर्य को 4 चांद लगाते थे। एक नाले के दहाने पर स्थित इन महलों में हर सुख सुविधा मुहैया थी। खुले हालनुमा कमरे, इन हालनुमा प्रकोष्ठों को जोड़ते गलियारे एवं विधिकाएं,

नीचे पहले माले में अहलकारों की आवाज गुरे थे तो दूसरे माले पर निर्मित प्रकोष्ठ अत्यंत खूबसूरती और नफासत से बनाए गए थे, जिनकी भित्तियों पर अनेक विषयों पर चित्र अंकित किए गए थे, जिनके हाशिए को बल्लरियों से सज्जित किया गया था। वस्तुतः ये रानी ज्वाला का महल था, जो तीन हालनुमा प्रकोष्ठों से निर्मित था। एक में उसका शयन कक्ष था, जो रोमांचित कर देने वाली तस्वीरों, नायिकाओं के पारदर्शी जामेले, मांसल शरीर दरबार दृश्यों के अलावा अनेक दृश्यावलियां इन भित्तियों पर अंकित थी। दूसरे प्रकोष्ठ में बैठक थी और तीसरा प्रकोष्ठ अतिथि गृह था, जिसमें मात्र शाही महिलाएं ही ठहर सकती थीं। ये दोनों प्रकोष्ठ भी सजे हुए थे।

पर अब दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया है और दीवारें नंगी हो आई हैं। दूसरा माला बारादरी की तरह बनाया गया था, जिसमें मेहराबनुमा द्वार बाहर की ओर खुलते थे, तो दूसरी ओर नदी की धारा की ओर से भी हवा की निकासी इस प्रकार थी कि गर्मियों में ठंडी हवा इन महलों में निवासियों को अप्लावित करती रहती थी। तीसरे माले तक संकरी सीढ़ियां ऊपर ले जाती थीं। तीन छोटे प्रकोष्ठों की ओर जिनके बाहर एक खुला गलियारा था। इस माले की छत अति कलात्मक गुंबदनुमा थी, जो कालांतर में प्राकृतिक विपदाओं के कारण और संभाल ना होने के कारण गिर पड़ी थी।

0: हम ज्वाली के किले के पास खड़े हैं और वहीं हमें एक वयोवृद्ध से परिचय हुआ है। आपका नाम जी?
1: ब्रह्मदास।
0: ब्रह्मदास जी, आपकी उम्र इस समय कितनी होगी?
1: उस वाले होगी 70 के करीब।
0: 70 के करीब। ये जो हम किला देख रहे हैं, इस किले के बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप
1: राजा गुलेरिया ना जी, रियासत गुलेर है
0: जी,
1: हरिपुर के पास
0: जी।
1: तो वहाँ का जो राजा था ना, उसका नाम था शमशेर सिंह। हमने जो सुना है तो शमशेर सिंह जो था वो वहाँ ब्यास दरियाए ब्यास के मतलब बीच में एक बल्ला होता था। बल्ला मतलब बैरान जमीन,
0: खाली
1: जगह थी और आसपास दरिया बगते थे। तो वहाँ एक कोई मृग था, शेर था। तो शेर ने लोगों का बड़ा नुकसान किया। तो उसने अपने सब हाहाकार कर दी। नूरपुर का राजा तो था, उसको भी पास बुलाया। उसने अपने शिकारी भेजे अपने लेकर ना, आप खुद नहीं गए वो। तो वो शिकारी जो थे वो देखते बांधते रहे, लेकिन उनसे मरा नहीं, वो कामयाब नहीं हुआ वो। तो फिर इसकी इसी ने कहना, चलो मैं चलता हूँ। राजा शमशेर सिंह गुलेर के राजा थे। तो गुलेर के राजा जो थे तो फिर वो उस वक़्त जो था वो टालों से और तलवारों से लड़ाई होती थी।
0: पुराना
1: जमाना था
0: जी।
1: तो उसके बाद वो गए, उन्होंने शेर को ललकारा। जब शेर को ललकारा के आ जा, तो मैं भी शेर हूँ और तू भी शेर है। जिस वक्त आया उसने टाल पे, उसके जो भार था ना वो थाम लिया
0: राजा ने।
1: यानी इस राजा के पास इतनी ताकत थी। राजा जो थे वो 4 रुपये जो होते थे चांदी के, वो मोड़ देते थे। एक नारियल इधर, एक नारियल इस बाम है, एक नारियल इधर, एक एट ए टाइम वो रुपये बन देते। जब उसने मार दिया तो उसके भावा लगी उन्हें गुलेर वाले की, वो है नूरपुर राजा। तो ऐसा है, ये तो नौकरों से काम लेता है, खुद में कुछ नहीं है, उसको
0: शरीर
1: ताकत नहीं है। उसको इस बात का हसद हुआ कि मैं तो भाई बदनाम हो गया और ये तो गुलेर वाले तो कहना नाम कमा गए हैं। तो वो लगा बोलना, भाई नहीं मैं इसे किस ढंग से इसको मतलब मैं दवाल करूं। उसने सोचा पे चलो अब ऐसे तो और कोई नहीं है। जब गुलेर राजा की लड़की थी ना, उसकी नूरपुर की, नूरपुर वालों की, वो उसने स्वयंवर चा दिया। तो कह हाँ, राजा नूरपुर ने अपनी लड़की का स्वयंवर चा दिया। तो उसने कहा कि भाई कोढ़ी पे जो है ना मतलब
0: खूंटा
1: काट दिया। लेकिन वो खूंटा नहीं था, वो खैर का वृक्ष था और उसको बढ़ई से मतलब तरखान से ऐसा खील कर बनवाया कि ऐसा पता लगा वो डंडा गड़ा हुआ है। लेकिन उसमें जड़ें थी, जड़ें में नीचे थी। तो आगे वो सारे उनके पंडित वगैरह जो थे वो भी आ गए गुलेर वालों के। तो उसने देखा भाई, जब वो बारी आई, जब कोड़ी पे गए राजा ने ऐसे जब किया तो खूंटा उखाड़ दिया, लेकिन उसमें जड़ें निकल आई। फिर उसको शक हो गया कि ये बेईमान है, जो गुलेर के राजा थे उन्होंने सोचा कि ये तो बेईमान है, ये मतलब ठीक नहीं है। तो फिर उसने जब नूरपुर वाले को पता लग गया भाई इसने तो अब कहना खूंटा जो है वो उखाड़ दिया है। तो उखाड़ने के बाद उसको लड़की तो ब्याहना पड़ी। हाँ, ब्याहनी पड़ी।
0: उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की
1: ज्वालपा,
0: यही मतलब ज्वाली जिनके नाम थे।
1: वो लड़की चली गई तो ले आया, शादी हो गई। तो वहाँ पर ना उसने सोचा पे अब ये तो नाम कमा गए हैं फिर भी, लेकिन इसको और कैसे जवाल किया जाए। नूरपुर वालों ने उन्हें सोचा कि चलो मीठा मीठा जहर दे दो, रसोई में डाल दो।
0: अच्छा, खाने में जहर,
1: खाने में डाल दी।
0: अच्छा।
1: तो उसने कहा भाई खाने में जहर डाल दिया तो अब क्या होगा। तो उसने अपने राजा ने अपने पंडित के साथ बात की। उन्हें कहा पंडित जी मतलब राजा साहब, कोई डराने की बात नहीं, आपने ये करना कि जब तक खा जाओ रोटी गंदा, जब तक मतलब सब खा ना चुके हैं तब तक नगारा जो है ना वो उसको ऐसे ऐसे करते रहना, दुरुडू देते रहना। हाँ, ढोल ढमाका साज होता था ना पहले, अब पहले मतलब होता था साज। अब तो लोग कम लाते, अब तो दूसरा कई अब कई कहीं आता। तो उसने नगारा शुरू कर दिया, बोले जी कोई बात नहीं,
0: एक तरफ खाना शुरू हो गया, नगारा
1: बजाना शुरू हो गया। उनको कहा कि आपको रोटी बाद में खिलाएंगे, आपको रोटी बाद में खिलाई जाएगी, लेकिन नगारा बंद ना हो बिल्कुल,
0: जब तक खाना चले
1: साथ। हाँ, नगारा भी बजता रहे। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे होगा। उन्होंने नगारा बजता रहा और खा के चले गए। लेकिन एक जो बूढ़ा था उसके कान में वो नगारे की आवाज नहीं पड़ी, वो जहर नहीं चली, वो खत्म हो गया, वो उसकी पोल नजर आ गई। लेकिन पहले जो था ना अपना, उन्होंने चीरियों ने इसको भेज दिया था गलेर वाले राजे को, के भाई इतना बलवान राजा है। तो जब आया ना वो, तो ये जो हरिपुर है ना गुलेर, ज्वाली जो है वो सेंटर में है, जितना फासला ज्वाली का और गुलेर का है उतना ही फासला ज्वाली का और नूरपुर का है।
0: ठीक है,
1: जब सेंटर में आए राजा जी, तो राजा उन्होंने वहाँ पर डोली उतार दी। अच्छा, वो लड़की लगी कहने कि भाई मैंने क्या मतलब दोष है मेरे में, मैंने शादी की है, तुम ब्याह कर लाए हो, फेरे लिए हुए हैं, तो ऐसे मेरा क्या कसूर है। बोले तेरा कसूर कोई नहीं है, लेकिन कसूर तेरा है माँ बाप का, क्योंकि वो बेईमान है और तू उनकी औलाद है। तो उसने कहा भाई हाँ, कहना ठीक है, मैं फेरे लिए हैं, मैं ब्याह कर लाया हूँ, तो उसके बाद मैं तुझे जो कुछ तेरा खर्चा पर्चा होगा सब कुछ दूंगा, राजा ने कहा गुलेर वाले ने। तो फिर लगा बोलना भाई, तो ये जो है ना कुछ जमीन दी उनको, ये वही जगह है, तो नीचे नाउन बनाया हुआ, जो नाउन है ना पानी का बड़ा बड़ा, वो उसका ही बनाया हुआ, वो कुआड़ बनाया हुआ है, जितना मतलब दुकानें बनाकर दी थी अपने, यानी शहर बिछा दिया ना रानी ने, बसाया हुआ है, तो यहाँ बनाया, उसने जो कुछ भी कहा ना वो कर दिया। ये ठाकर द्वारा है, ये जो मतलब मंदिर है सेंटर के किनारे, वो भी उनका बनाया हुआ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर।
2: अब सब कुछ समाप्त हो गया है, मात्र प्रवेश द्वार और ऊपरी मेहराबें बची हैं। इन महलों के साथ लगते और भी भवनों का एक समूह था जो इन महलों के साथ ही सटा था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार ये भवन शाही कार्यालय थे, जिनके निचले माले में शाही घुड़साल थी। अब इस भवन समूह का भी बुरा हाल है। ये महल कब बने, इसके बारे में अनेक अटकलें लग

0: जाती रही हैं।
1: चर्चित कथा के अनुसार नूरपुरियों और गुलेरियों में आपस में किसी बात पर ठन गई थी। परिणामतः गुलेर के राजा बलदेव सिंह ने नूरपुर के तत्कालीन राजा का अपमान कर दिया। फलस्वरूप वह गुलेर के राजा बलदेव सिंह से अपना हिसाब चुकता करने की बात मन में रख बाट जोहने लगा कि कब अवसर मिले और वह अपना हिसाब चुकाए। साथ ही साथ उसने अपनी बिगड़ैल शहजादी के ब्याह के रिश्ते की बात गुलेर के शहजादे के साथ चलाई और रिश्ता कबूल हो जाने पर उसने शाही बारात को जहर देने की योजना बनाई।
0: इसकी भनक गुलेर की एक कन्या जो नूरपुर में राजपुरोहित के घराने में ब्याही थी के कान में पड़ी तो उसने ये बात गुलेर से आए पुरोहित जो रिश्ते में उसके चाचा लगते थे के कान में डाल दी तो ये बात राजा बलदेव सिंह के कान में भी जा पहुंची। गुलेर में एक नगाड़ा बजाने वाला जहर को दूर करने में सिद्धस्थ था। वे नगाड़ा बजाकर जहर खींच लेता था। सौभाग्य से वे नगाड़े के साथ बाजे गाजे वालों के आगे ही चल रहा था। उसे गुप्त रूप से बात समझाई गई तो उसने सुझाया कि खाने पर बैठने से पहले वे नगाड़ा बजाता रहेगा और जब तक नगाड़ा बजाता रहे कोई खाना नहीं खाएगा। जब नगाड़ा बजना बंद हो जाए तो ही खाने पर बैठे।
1: कहते हैं कि खाना शुरू होने से पहले उसने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया जिससे खाने में पड़ा जहर धीरे धीरे हवा में घुलकर नगाड़े में जाता रहा। वस्तुतः नगाड़ा जहर को सींचता रहा और जहर के प्रभाव से वह फट गया। तब बारातियों ने खाना खाया और ब्याह कर शहजादी को बहू बनाकर राजा बलदेव सिंह जब लिवा लाए तो उनके लड़के गोवर्धन सिंह ने उसे गुलेर ले जाने के बजाय ऐसी जगह रखने की बात सोची जो नूरपुर के पास भी हो और गुलेर की सीमा में भी हो।
0: और इसके एकांतवास के लिए अलग से महल बनाए गए जो वर्तमान ज्वाली के स्थान पर भगना विशेष के तौर पर स्थित हैं। ये उसका बदला था जो गुलेर का शहजादा नूरपुरियों के षड्यंत्र के खिलाफ लेना चाहता था।
2: ज्वाली महल के तीसरी मंजिल के ऊपर अब हम खड़े हैं और यहाँ इसके नीचे एक मंदिर है इस महल के नीचे और जहाँ खड़े हैं वहाँ भी कालका माता का मंदिर है और यहाँ की इस समय जो सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की और इस प्रांगण की इन महलों की वो हमारे साथ हैं माता जी। माता जी आप कब से यहाँ इनकी सेवा कर रहे हैं?
3: मैं इनकी सेवा 1991 से कर रही हूँ।
2: 1991 से आप इसी गांव से हैं और आप अपना नाम भी बताइए।
3: मेरा नाम सुरक्षा देवी है, सुरक्षा शर्मा।
2: तो आपको कैसे प्रेरणा मिली इस मंदिर की सेवा करने की और इन महलों की देखरेख के लिए?
3: मैं बहुत बीमार थी तो माता ने मुझे ठीक किया। फिर पहले मैंने बार का मंदिर जो है ना इसको बनाने का निश्चय किया। जब बनाने लगी तो सब कह लगे कि हम सबने सहयोग दिया फिर वो बन गया। तो उसके बाद माता ने फिर कहा कि मुझे अब तो यहाँ अंदर आ, अंदर पुजारी चाहती थी ना माता, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ ये सब तुम्हारा ही है और यहाँ आकर मेरी सेवा करो। फिर यहाँ माता की पिंडी रखी उससे तब से मैं सेवा कर रही हूँ। पहले बहुत बीमार थी, माता ने ठीक किया मेरे को।
2: और जो भी हम महल देख रहे हैं जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं ऊपर आए हैं इनके बारे में आप बताइए कि आपको ये जो कमरे हैं इनमें कौन कौन सा कमरा कैसा लग रहा है? ऊपर जहाँ खड़े हैं वहाँ ऊपर की दीवारें आप हमें बड़ी बड़ी ईंटों की भी दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में कुछ बताइए।
3: ये पहले तो ईंटे की बनी है, ऊपर जो है ना ये चार ईंटें हैं, बड़ी चौड़ी ईंटें हैं, 400 ईंटें हैं, ये बड़ी बनी हुई ईंट नहीं है ये।

0: और सदियों से बनी है ऐसा देखा मैंने। हम यही सोचते हैं ना कि हम माता रहती होगी ऊपर कमरे में, साथ में रसोई होगी उनकी, और बाहर चौबारे में बैठ के हवा वगैरह लेते होंगे, बस यही सोचते रहते हैं ना।
1: माता से आपका आशय किस माता से है?
0: ये माता है जो ज्वाली शहर की मालिक है, ज्वालपा रानी है जो, वो माता है, उसको माता कहते हैं।
1: जैसे ज्वाली रानी ज्वाला के नाम से ही मशहूर हुआ, क्या उसको ही माता कहा जा रहा है या उससे पहले किसी देवी को जो पूजनीय थी यहाँ की?
0: जो वो माता है उसको माता कहते हैं, जो दूसरी माता है ना ऊपर काल का रूप है वो माता उसको भी बोलते हैं।
1: और ज्वाला रानी है जो, वो माता से अलग रानी है वो?
0: क्योंकि उसने भक्ति से टाइम निकाला ना, तो जो भी भक्ति करता है, जो देवी देवतों में सोया रहता है उसको माता ही कहते हैं ना, तो उसकी प्रेरणा से। पहले शहर में बहुत यहाँ पर होते थे दंगे विषाद होना, फिर बसों का गिरना, बहुत कुछ नुकसान करती थी माता, जब के बाद ये मंदिर बना ना उसके बाद शांत है ज्वाला जी में, ज्वाली में।
1: अब रानी ज्वाला के बारे में तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लेकिन रानी के साथ राजा का नाम इतना नहीं जुड़ा हुआ, इसकी क्या वजह रही होगी?
0: बुजुर्ग जो आते हैं ना अलग अलग बताते हैं, पिछले और कहते थे दूसरे कहते हैं, लेकिन राजा का नाम शमशेर सिंह था जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था ना, वो शमशेर सिंह था उनका नाम।
1: तो इन महलों को बनाने का क्या मतलब रहा होगा उन दिनों जब रानी अकेली रहती थी यहाँ?
0: पहले यहाँ तबू में छोड़ के गए थे रानी को, तो फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मंदिर यहाँ महल बना के दिए उनको, दासी दासी सब थे ना, लेकिन वो तबू में छोड़ के गए थे ना, तो फिर उसके बाद ये महल बनाए थे।
1: इसी ऊंचाई से हमें नजर आ रहा है, नीचे छोटा सा तालाब है, इस जगह का नाम क्या है? पानी भी है, मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं अभी भी लोग।
0: वो नाव ने बनाया है ना, माता ने बनवाया है नाव, नाव कहते हैं ना उसको, पानी का चश्मा, तो माता ने बनवाया था चश्मा वो, वहाँ उसमें मछली छोड़ी गई थी, उसमें बालू डाला उसका सोने का, वो मछली काफी साल रही, लेकिन अब 10-12 साल से 15 साल से वो खत्म हो गई है, इसमें मार भी हो गई है।
1: क्या ये नौन जो जगह है नहाने के लिए उसी समय से है जब से ये किला, जब से ये महल बने हैं?
0: ये किला और जब से बने हैं, 108 पैड़ियाँ हैं, ये उस जभी से बनी है माता के नहाने के लिए, जब से बना हुआ है ये। और जो दुकानें हैं 108 दुकानें हैं माता के, बाजार जो सारा है ना, ये सब माता के उनका बनाया हुई दुकानें हैं।
1: छोटा सा जो भी ये शहर है,
0: हाँ सब माता ने बनाया, पहले ये जंगल ही था।
1: जंगल के अलावा इसी महल के चारों तरफ अगर ना भी कहें तो 2-3 साइड पे तो नजर आ रहा है कि एक खाई सी नजर आ रही है, ये खाई क्या है ये?
0: नहीं ये तो जाता है गाँव को जाता है पानी के बाद, कितनी सुकान में कुंजा में बनाई थी नहर, ये 1900 कुंजा में नहर खोदी थी।
1: उस नहर की बात नहीं कर रहा हूँ, महल के बिल्कुल साथ दिखाई दे रही है ना, खड्डी खाली खाली पड़ी है जो, ये बिल्कुल जो जो
0: दीवार होगी माता की,
1: महल की
0: दीवार, रक्षा के लिए दीवार बनी हुई थी चारों तरफ, गिर गई है ना अभी।
1: तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी ज्वाली महल के हम एक ऐसे गलियारे में खड़े हैं जहाँ मेरी बाई तरफ से बहुत ठंडी हवा इस समय भी आ रही है और दाई तरफ पूर्व दिशा है, यहाँ से सूरज की सीधी किरणें आती हैं। तो इसी जगह पर कुछ बाहर से पर्यटक आए हुए हैं और उनसे हमने जब बातचीत की। भाई साहब, आपका नाम?
1: मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है।
0: आप शर्मा जी कहाँ से आए हैं?
1: मैं दिल्ली से।
0: दिल्ली से आए?
1: हाँ जी।
0: तो दिल्ली से आपको कौन सी ऐसी चीज़ें यहाँ तक खींच रही?
1: मैं, मेरी ससुराल जी दरी है जी। वैसे मैं जब भी आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ, यहाँ नज़ारा देखने का बहुत ही अच्छा है।
0: इन पुराने महलों को, इन पुराने चबूतरों को देखकर आपको कैसा लगा?
1: इन पुराने महलों चबूतरों को देख कैसा लग रहा, काश उस समय हम पैदा कभी हुआ होते यहाँ पर,
0: बहुत अच्छे।
1: तो उस टाइम हमें ये चीज़ देखने को मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता।
0: आप जिस जगह हम खड़े हैं वो ऐसे अच्छी जगह है कि जहाँ बिल्कुल नेचुरल सीधी प्राकृतिक तौर पे ठंडी हवा आ रही है।
1: हाँ जी। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल धौलाधार पर्वत बिल्कुल सामने सफ़ेद चादर की तरह पूरा बिछा हुआ है, देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। शायद उस टाइम जो लोग रहे होंगे कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्होंने ये नज़ारा, महल और ये नज़ारा उस टाइम भी देखा होगा।
0: आप दिल्ली से आए हैं, इस समय जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लगा हुआ है इन चबूतरों को, उनको देख कर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: उनको देख के तो लगता है इन मसाले के आगे तो सीमेंट भी बेकार है। करीब 500-600 साल पुराना ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कोई सरिया, कोई दीवार, कोई बीम वगैरह इसमें नहीं है, अभी तक वही मजबूती इसमें बरकरार है। अगर इसकी देखभाल पुराने टाइम से अगर लगातार होती रहती तो मैं समझता हूँ ये महल एज इट इज़ वैसे ही रहता जैसे आज से 500-700 साल पहले था।
0: भैया जी, आपसे अभी और बात करते हैं। आप भी, मैं देख रहा हूँ आप मुझे स्टूडेंट लगते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप भी क्या महल देखने आए हैं?
2: हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है जी और मैं यहीं

0: प्राची स्कूल में ही पढ़ा हूँ और काफ़ी समय से जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इसी महल को देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं कभी कभी।
1: इन महलों में आके आपको शांति भी मिलती है?
0: काफ़ी शांति मिलती है यहाँ आके, बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है।
1: और आपके ये क्लास फेलो, आपका नाम?
2: मेरा नाम योगेश कुमार है जी, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ।
1: एमए कौन से हिंदी का? सब्जेक्ट हिंदी है।
2: हिंदी का, और मैं पठानकोट का हूँ, लेकिन यह मेरी रिश्तेदारी है इसलिए मैं यहाँ अक्सर घूमने आ जाता हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है। जब भी मैं उब जाता हूँ पढ़ाई से तो यहाँ चलाता हूँ। यहाँ का नज़ारा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ पठानकोट में ऐसा कोई भी पहाड़ी क्षेत्र या ऐसा महल नहीं है, तो यहाँ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे मैं तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ इस महल को, अक्सर आता हूँ, लेकिन जब से इसको देख रहा हूँ तो मेरे को लगता था कि ये 2-4 साल में गिर जाएगा, लेकिन अब भी मैं जब 2005 में यहाँ आया हूँ तो ये वैसे का वैसा ही है, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ पुराने इन कलाकृतियों को देखकर कि ये जब इनमें लोग रहते होंगे, जो इन जहाँ की रानी होंगी, तो वो बहुत ही खुश नसीब होंगी।
1: सुनने में है कि यहाँ की रानी ज्वाली, जहाँ ज्वाला रानी थी यहाँ, उसके बारे में कुछ आपने सुना या पढ़ा? जितना भी पढ़ा सुना आप हमें बताइए।
2: देखिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन यहाँ के मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे मैंने पूछा है कि वो बहुत ही अच्छी रानी थी, भक्ति वाली थी। उन्होंने ये महल उनके स्वामी ने बनाया था उनके लिए, वो उनकी रिहाइश के लिए उनको दे गए थे, तो उन्होंने यहाँ बहुत ही ज़्यादा वो की है, तरक्की की है इसको बनाने के लिए, और वो यहाँ नीचे नहाने भी जाया करती थी। इस महल की सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों तरफ एक नहर बनाई हुई है, जो कि बाहर से हमलावर अक्सर आया जाया करते थे, इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सब किया था।
3: यह बात कुछ हजम नहीं होती लगती। कोई भी पिता अपनी लड़की को विधवा नहीं देखना चाहता, और वह तो फिर राजा था। यदि षड्यंत्र रचा ही था तो जहर से जब वे नहीं मरे तो शादी क्यों कर दी? दूसरे बलदेव सिंह के नाम का कोई भी गुलेरिया राजा गुलेर की वंशावली में नहीं हुआ है। हाँ, गोवर्धन सिंह अवश्य गुलेर की गद्दी पर 1730 ईस्वी में बैठा था, पर उसके पिता का नाम दलीप सिंह था।
4: एक अन्य दंत कथा के अनुसार नूरपुर के राजा ने अपने बेटे ज्वाला के लिए एक स्वयंवर रचा था। शर्त ये थी कि जो राजकुमार दौड़ते घोड़े पर सवार रहकर जमीन में गढ़े खूंटे को उखाड़ने में कामयाब होता है, उसे राजकुमारी ब्याह दी जाएगी। वस्तुतः राजा ने एक सूखा पेड़ कटवाकर उसे खूंटे का रूप दे दिया था, और पेड़ की जड़ें जमीन में ही गढ़ी रही थी। अनेक शहजादों ने कोशिश की पर असफल रहे। गुलेर का शहजादा गोवर्धन सिंह कुछ कुछ ताड़ गया था, अतः उसने ऐसी योजना बनाई कि अपनी कांख में खूंटे को लेकर भागते घोड़े को एड़ लगाई। खूंटा तो उखड़ गया पर घोड़े ने दम तोड़ दिया। गोवर्धन ने शादी तो कर ली, पर अपने प्रिय घोड़े के दम तोड़ने पर वे इतना दुखी हुआ कि उसने उसका बदला विवाहित रानी ज्वाली को एकांत वास देकर चुकाया।
3: बदला चुकाने के लिए इतना विशाल और भव्य महल बनवाना और उसे बेशकीमती चित्रावलियों से अलंकृत करना और ज्वाली का नया कस्बा बसाना कि वह अपने आप में राज्य लगे, यह तभी संभव हो सकता है जब राजा रानी से खूब प्रणय रखता हो। और वह नहीं चाहता था कि कोई उसके प्रेम में खलल पड़े, अतः उसने नदी के किनारे एक ऊंचे पठार पर नैसर्गिक वातावरण में इस महल का निर्माण करवाया।
4: रानी की सुख सुविधा के लिए दासियों का कारवां और अनेक गांवों का राजस्व अहलकारों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था। महल के बाहर सुंदर उद्यान था, जिसमें अनेक स्थानों से फूलों और फलों के पौधे लिवाकर लगाए गए थे। महलों के नीचे थोड़ी दूरी पर ही एक कुदरती चश्मे को नौन का रूप दिया गया था, जिसमें रानी और उसकी दासियां स्नान करती थी। आज भी ये एक वृहद सरोवर किसी स्विमिंग पूल की तरह लगता है और सारा वर्ष जल से अप्लावित रहता है। जब हम जनवरी माह में वहाँ गए थे तो ये जल से लबालब भरा था, लगभग 10-11 फुट गहरा और 25 फुट × 25 फुट रकबे में स्थित।
3: यह जल स्रोत अति निर्मल जल से अप्लावित था और इसमें लगभग 2.5-3 फुट लंबी अनेक मछलियां जल विहार कर रही थीं।
4: इसमें कोई शक नहीं कि ज्वाला नूरपुर की शहजादी थी और उसकी शादी गोवर्धन सिंह से हुई थी। हो सकता है कि इन दंत कथाओं में आंशिक सच्चाई हो। कभी गोवर्धन सिंह रानी से किसी कारणवश नाराज हो गया हो और अनेक दिनों तक वे रानी के पास नहीं आया हो, तथापि ज्वाला का नाम एक चर्चित गुलेरी रानी के तौर पर जाना जाता है। इस इलाके का नाम उसके नाम से ही ज्वाली चर्चित हुआ था। राजा गोवर्धन सिंह का देहांत 1760 ईस्वी में हुआ।
3: गोवर्धन सिंह के देहांत के बाद ज्वाला रानी कहाँ गई, इस पर भी अनेक विवादास्पद बातें सामने आती हैं। कुछ का कहना है कि वह कभी भी अपने जीते जी गुलेर नहीं गई। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नौण की निचली तरफ कर दिया गया था और ज्वाली गांव के निवर्तमान प्रधान के अनुसार ज्वाली की समाधि भी इस गांव में स्थित है।
4: दूसरे मत के अनुसार रानी राजा गोवर्धन सिंह की मृत्यु पर सती हो गई थी। एक अन्य दंत कथा के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद रानी गुलेर की ओर चली गई, महल वीरान हो गए। रानी ज्वाला के साथ ही ये महल वजूद में आए थे और उसके साथ ही वीरान हो गए।
5: अभी आप सुन रहे थे रूपक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के चित्रपट संगीत की। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाए इस गीत से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और यहाँ से आप सुन रहे हैं बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए आराधना फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं बेहद ही प्यारे प्यारे से सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनने वाले हैं हमराज फिल्म से। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।

श्रोता, हिमालय की गोद में इस फिल्म के गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved increase in minimum support prices MSP for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation CBI has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the